अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है हम में से कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यस्टरडे की चिंता करते हैं? कल उसने मुझसे क्या बोल दिया था, कल मेरा ये काम रह गया था, कल ऐसा हुआ था, कल वैसा हुआ था। तो सुनिए दोस्तों, कल जो था वो एक ड्राफ्ट था और वो कल की बात थी, और आज जो सुबह मिली है ना, ये एक ब्लैंक पेपर है। अगर पुरानी गलतियों को बार बार लिखते रहेंगे तो नई कहानी कब बनेगी? आज का फंडा बहुत सिंपल होना चाहिए, पास्ट को डस्टबिन में डालिए और आज को रिस्टार्ट कीजिए। कल क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, और आज क्या हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन डैट, राइट? आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: इटहैपेंस सुन रहे हैं आप मेरे साथ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको इस मॉर्निंग मजा आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है उन सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप आ गए हैं इटहैपेंस में सताक्षी के साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया, तो क्या आप कहेंगे? मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी ऑफिस की बॉस, हाँ लेडी बॉस है ना, हाँ ज्यादा ध्यान तो फिर वहीं रहता है। तो मतलब कोई एक ऐसा गोल, कोई एक ऐसा ड्रीम, कोई एक ऐसी बात जो सुबह उठते ही सबसे पहले जहन में आ गई, यार आज तो मेरी ये वाली मीटिंग है, यार आज तो मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, जो भी वो पहला थॉट जो आपके माइंड में आया वो क्या था, मेरे साथ शेयर कीजिए ना रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। बताइए मुझे, स्पेशली फेसबुक पेज पर मैं एक्टिव हूँ, मुझे बताइए कि क्या है वो इस वक्त का थॉट जो आज सबसे पहले सुबह आपके माइंड में आया। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

जी हाँ, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आज की सुबह कुछ जबरदस्त बातें। दोस्तों आजकल हम सब कितने बिजी हैं ना, टेक्स्ट मैसेज फास्ट हो गए हैं, लेकिन बातें बहुत छोटी हो गई हैं। हम हाउ आर यू तो मैसेज पर सेंड कर देते हैं, पर सामने वाले का जवाब ध्यान से सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बोलते गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते सिर्फ बोलने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं। तो आज अगर किसी अपने को कॉल करिएगा तो उसको सुनिएगा बिना किसी एडवाइस दिए, बिना किसी ताने के, देखिएगा वो रिश्ता कितना हल्का महसूस होगा आपको। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं पर बदले में आपको वो केयर नहीं मिलती? ये पेन तब होता है जब हम दूसरों से वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम उनके लिए फील करते हैं। दोस्तों, हर कोई आपकी तरह प्यार नहीं कर सकता, हर कोई आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी जगह देना और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना ही पीस ऑफ माइंड की चाबी है। बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ केयर होती है। आइए इसी बात पर सताक्षी को सुनिए और सुनते रहिए ठापन्स रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जय छात्र, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। दुनिया को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आज का मेरा सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, आप परफेक्ट नहीं है और ना कभी हो सकते। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, पर पता है क्या, कोई भी आप जैसा नहीं है। आप अपनी कार्बन कॉपी हैं और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो काफी है। और उसी काफी वाली मेहनत के नाम एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए छात्रंस। जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी मेरे साथ।

फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ साथ। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी और आपको लेकर चलूंगी आपके सपनों की ओर। कल फिर से हम और आप करेंगे जिंदगी की कुछ खास और जबरदस्त बातें, लेकिन अब आज के सफर से ये वक्त हो गया है विदा और इजाजत लेने का। सो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसन वाने अमते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास बनाउंदियां ने। एक रिलीज़ तो पहला हफ्ते विच करोड़ों रुपए कमांदियां ने ते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने। ते दूसरा वो जो थिएटर विच भावें ही वधिया परफॉर्मेंस ना करन पर दर्शकों के जहन विच सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ते ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने जिन्हां ने पांच दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर बॉबी तो दे लीड रोल दे तौर विच शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मां दे पिछे नहीं भजे। यही वजह है कि उन्हां दा फिल्मोग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल हैगियां ने जो रिलीज दे समय का बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई पर अज फिल्मां हर सिनेमा लवर दी बकेट लिस्ट विच जरूर ने। दस दी उन्हां ही बेस्ट बेस्ट वालियां फिल्मां दे बारे विच पर पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिन बने हुए ऋषि कपूर दी बेस्ट फिल्म जीडिया थिएटर से फ्लॉप रही पर सदाबहार है उन्होंने पहला नाम आंदा है जी मेरा नाम जोकर जो 1970 आई सी जादुई बॉलीवुड की सब तो वड्डी शानदार फिल्म की गल होगी तो राजकुमार राजकपूर की इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र हमेशा सब तो पहला किया जाएगा। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के नेशनल अवार्ड जीतया। फिल्म की कहानी एक जोकर की जिंदगी तीन वख वख पड़ाव उसके अधूरे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। ऋषि कपूर ने इस राज कपूर के बचपन का रोल निभाया। रिलीज होने से फिल्म इन बुरी तरह फ्लॉप हुई कि कपूर परिवार कर्ज विच डुब गया क्योंकि दहाकियां दर्शकां नूं ना इसका लंबा रन टाइम अते गहरा इमोशनल कंटेंट पसंद नहीं आया। पर सालां बाद जद फिल्म नूं दुबारा देखिया गया तो इस नूं एक टाइमलैस मास्टरपीस मनिया गया ते अज दुनिया भर विच सब तो ज्यादा देखी जाण वाली अते सब तो वड्डी कल्ट फिल्मां दे विचों एक हैगी है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी वन सर ओवर एम थे जी आरचे संदेश अलग दिन आज बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है, जिसनु रिलीज होने ते पहचान नहीं मिली, जिसने जिसके बाद हकदार सी। उदों इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसिस दे नाल डबल रोल किया। फिल्म की कहानी गलतफहमियां प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारां दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी यूएसपी सी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी, इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नूं थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समें विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने, तां यूट्यूब ते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करदी है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
2: They see friends.
3: Hey, yo, Sean.
4: Atan di khiti atan okh di nak tak mere rahan di makama naal. Ho mere rahan di makama naal pak thak. Sahaj subhanu rakhi.

in the house. हाँ जी, तो ए ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्मां जो पहला पसंद नहीं आईयां पर बाद विच बहुत ज्यादा पसंद आईयां, है ना। तो तुसी दसो कि थानू इन्हां दे विचों केड़ी सब तो ज्यादा पसंद है। फटाफट दे नाल छोड़ो रेडियो बिस्वानी 101.1 FM साडे फेसबुक पेज सर्जित बिस्वानी @biswani.com साथ ही मिलाईटी है जरिया जेड़ा भी अपनाना चाहुंदे हैगे हो तुसी अपना साडा गलबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां हमेशा दी तरह यही वादा करना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। कल करदे मुलाकात। सत श्री अकाल।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज बाय मनीष।
0: ओके तुम्हारी
1: मैं जा।
0: लगता रूम में रह गया।

0: कितनी हसरत।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर।

0: नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर, प्री सोलर पावर के साथ।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शे निव्या के साथ। और सबसे पहले माफी चाहते हैं आपसे देरी के लिए, लेकिन मैं क्या कहूँ, किस चीज ने हमें आपसे मिलने से रोक लिया था, बट उसका प्रबंध हमने कर लिया है। वो चीज को पीछे छोड़ते हुए हमने कह दिया है कि हमें हमारे लिसनर्स से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे नेटवर्क इशू आए, चाहे कोई और इशू आए, हम आपसे मिलेंगे। और हम आ गए हैं, बट अगेन माफी चाहते हैं देरी के लिए, और इसकी भरपाई हम बहुत ही अच्छे से करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड प्रोग्राम की शुरुआत रही है इवनिंग वाइब की, तो वो तो एकदम धुरंधर होनी चाहिए। आप लोग बोलोगे हैं धुरंधर के गाने बजने वाले? नहीं नहीं नहीं, धुरंधर मतलब जबरदस्त होनी चाहिए, और धुरंधर के गाने भी प्ले होंगे, लेकिन धुरंधर का मतलब यहां पर जबरदस्त था। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आइए सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्दी रिचुअल के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करता है पूरे हफ्ते की जद्दोजहद के लिए। किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप उसमें बहुत ही प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ काम करो, आप चाहते हो कि आप उसमें एकदम काम माइंडसेट के साथ काम करो, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी काम कर सकती है आपके लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी से। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते करते सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जो कि आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये गाना है किसका? जी हाँ, ये गाना है उदित नारायण जी का। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए।

जी दोस्तों, एक बात तो पक्की है, कुछ गाने बनाए जाते हैं और कुछ गाने दिल से बनाए जाते हैं, और ये दिल से बनाया गया गाना है, ये तो आप कह सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा चलते हैं मौसम की ओर। जी हाँ, मौसम क्या कह रहा है, क्या करवट ले रहा है, आइए जरा सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 21.9 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है, और 21 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको अगेन फील हो रहा है, 21.9 डिग्री सेल्सियस के करीब अभी है और फील आपको हो रहा है 21 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं अगर रात की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। 30% चांसेस बारिश के जो कि मुझे नजर आ रही है 7 बजे तक होती हुई, थोड़ी सी उसके बाद भी बीच में, बट अगेन बारिश यही है 11% 12%, और इसका मतलब यही है कि कहीं कहीं पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, उसके अलावा सब कुछ बढ़िया यहाँ पर नजर आ रहा है और एयर क्वालिटी भी है एकदम एक्सीलेंट। जी हाँ, तो आज के साथ अब कल की बात की जाए वेडनेसडे की, तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 5% चांसेस बारिश के जो कि ना के बराबर है, और उसका मतलब ये है कि कल आपको चमकता हुआ खिलखिलाता हुआ सूरज जो है वो दिखने वाला है। तो विटामिन डी कंज्यूम कीजिए और बाहर निकलिए क्योंकि बाहर निकलने का मौसम है। जी हाँ, इसी के साथ थर्सडे को भी 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 10% चांसेस ऑफ बारिश जो कि अगेन ना के बराबर है, और अगेन खिलखिलाता हुआ सूरज मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट सिर्फ कल और परसों ही नहीं बल्कि वेडनेसडे और थर्सडे ही नहीं बल्कि फ्राइडे और सैटरडे को भी मुझे वैसा ही मौसम नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत बीच में बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में, बूंदाबांदी, बाकी सब बढ़िया है। मतलब अगले 4 दिन मौसम एकदम सुहाना और खूबसूरत रहेगा, तो अपनी बाहर जाने की जितनी भी आउटिंग्स हैं वो प्लान कर लीजिए, बिकॉज अभी नहीं तो कब, राइट। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th ਆਫ ਆਗਸਟ 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हम करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं कहने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कैसे आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट कर पाएंगे, फरमाइश कर पाएंगे या फिर किसी को डेडिकेट कर पाएंगे। सो ध्यान से सुनिए, आपको अगर कोई गाना पसंद है और आप चाहते हो कि वो गाना जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बन जाए, तो आपको एक फोन मिलाना है। जी हाँ, आपको अपना फोन उठाना है और एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है +91 8288 8 7 1 7 0 1। आई रिपीट, +91 8288 8 7 1 7 0 1। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और अगर आप चाहते हैं किसी को कोई गाना डेडिकेट करना, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट टाइम। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए। और दोस्तों यहाँ पर हमारी यहाँ पे फरमाइशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, और फरमाइश से ज्यादा मैं कहूंगी डेडिकेटेड सॉन्ग। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बर्थडे विश करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है हमारी एक प्यारी सी लिसनर के लिए। जी हाँ, और ये बर्थडे विश बेसिकली हमें करने के लिए कहा गया है और साथ में एक गाना भी डेडिकेट किया गया है। तो सबसे पहले तो जस्सी जी ने अपनी वाइफ परमजीत जी को बर्थडे विश करने के लिए हमें यहाँ पर कहा है और बर्थडे विश की है, और साथ में एक गाना भी खूबसूरत सा हम उनके लिए प्ले करने वाले। तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद परमजीत जी आपको, और हम यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे। जी हाँ, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आपको वेल्थ भी आती रहे और खुशियां जो है वो आपकी जिंदगी में बनी रहे, यही हमारी दुआ है। और हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम जस्सी जी एंड फ्रॉम अस। और साथ में जो गाना जस्सी जी ने आपके लिए डेडिकेट किया है वो है बार बार दिन ये आए। आई मीन मैं गाने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती, बट डोंट वरी, रफी जी गाएंगे यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह खूबसूरत पलों का पार्ट बनाने के लिए, रेडियो ब्रिस्बेन को अपने खूबसूरत पलों का पार्ट बनाने के लिए। और ये गाना परमजीत जी आपके लिए फ्रॉम जस्सी जी, थैंक यू सो मच। ये रहा गाना खूबसूरत सा।

और क्या और क्या, चलिए मैं बताती हूँ आपको और क्या. वेल वेल वेल, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और कैसे हमारी ये जो जनरेशन है, एक पर्टिकुलर जनरेशन जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट. सो बेसिकली इट्स अ वीडियो अबाउट अ फादर जो कि वीडियो बना रहे हैं, जो कि खुद एक क्रिएटर हैं. और वो वीडियो में कहते हैं कि यू नो व्हाट, हमारी जो ये जो करंट जनरेशन है, मतलब अब तो जेन बीटा शुरू हो गई है, लेकिन जेन बीटा से पहले जो है वो जेन अल्फा जो है वो आई थी. एक जेनजी होता है, जेनजी के बाद जेन अल्फा आई है, उसके बाद जेन बीटा आई है, राइट? सो जेन अल्फा की वो बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक जेन अल्फा जो है किड के पापा हैं. और वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये जो जेन अल्फा जनरेशन है, ये AI में बहुत ज्यादा आगे काम करेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे जो कि दुनिया ने कभी देखे नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पर इनको सिखाया क्या जा रहा है? अब आप लोग बोलोगे कि ओके, सो ही इज रैंटिंग अबाउट हिज होमवर्क और यू नो और हिज टीचर और हिज स्कूल वर्क. नो, ही इज नॉट रैंटिंग अबाउट हिज किड्स स्कूल वर्क, बट उसके किड की चॉइस के बारे में ही इज रैंटिंग. जी हाँ, सो बेसिकली वो कहते हैं कि मेरा बेटा है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है और वो एक बुक रीड कर रहा है और उस बुक का जो नाम है वो है म्याऊ. जी हाँ, और वो बुक जो है वो $35 के करीब है. और वो $35 की बुक जो है जिसको उनका बेटा पढ़ रहा है, उनको लग रहा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा है, लाइक हैरी पॉटर और कुछ वैसा सा पढ़ रहा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. 7 साल का बेटा है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं. लेकिन फिर वो बुक लाते हैं अपने बेटे से और उनसे लेते हैं और अपने बेटे से लेते हैं और फिर वो दिखाते हैं, बट कहते हैं ये जो बुक है इसका नाम है म्याऊ, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं इसका नाम भी है म्याऊ और इसमें लिखा है म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ. जी हाँ, आई डोंट नो, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी ना, मैं इतनी हंस रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, हमने क्यों नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा जिसमें बाऊ बाऊ बाऊ बाऊ या म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ या वाह वाह वाह वाह ऐसे करके, मतलब हम भी ऐसा कुछ पढ़ सकते थे. लेकिन हमारे टाइम पे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि यू नो वॉट, अगर ये नहीं करोगे तो वो करना पड़ेगा, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें वो होगा, अगर तुम मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो तुमको बाद में कैलकुलेशंस करनी नहीं आएगी, साइंस नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा. आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ. द थिंग इज कि वो पेरेंट, वो जो फादर है, वो यही कह रहा है कि ये $35 की बुक जिसमें लिटरली पेजेस भी जो है चैप्टर्स का नाम भी म्याऊ है और लिखा भी म्याऊ म्याऊ म्याऊ हुआ है और 350 पेजेस के करीब वो बुक है और वो कह रहे हैं अपने बेटे को कि बेटा इसमें म्याऊ म्याऊ म्याऊ ये तू क्या पढ़ रहा है, रहने दे. तो बेटा कह रहा है नहीं नहीं, मैं सारी पढ़ूंगा, मैं सारी की सारी बुक पढ़ूंगा. वो 7 साल का बेटा अपने फादर को कह रहा है कि मैं सारी की सारी बुक पढ़ूंगा, जैसे कि उसमें कुछ अलग है. अब आई डोंट नो द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट बुक, बट द थिंग इज इफ यू नो अबाउट इट जरूर हमें बताइएगा. और ये क्या चल रहा है, मतलब आजकल बच्चों को कुछ भी सिखाया जा रहा है, मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इसके पीछे कोई मतलब है या नहीं, बट देन अगर ये बुक बनी है, इसे पब्लिश किया गया है, तो शायद इसके पीछे कोई मतलब हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा कि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, जो 6 या 7 साल के हैं, वो ऐसी कोई बुक ऑर्डर करें जो कि काफी महंगी है और उसमें निकले बाऊ बाऊ बाऊ बाऊ या म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ या. डू टेल मी अबाउट इट. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
13: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
14: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
13: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
14: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
13: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
14: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
15: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
16: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
17: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इस दुनिया में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया था कि टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी ने शादी कर ली। वेल ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू द लवली कपल, बट द थिंग इज कि बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड हाईलाइट हुई थी। ऑफकोर्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये जो शादी है उसकी रिसेप्शन हुई, वो तो ऑफकोर्स लाइमलाइट बनी ही हुई थी। लेकिन मेन चर्चा हुई बाद में। जी हाँ, बाद में क्या चर्चा हुई? वेल, उस शादी का जितना भी कचरा था, यानी कि जो गार्बेज था, वो जो ट्रैश था उस शादी का, वो सारा एक आर्टिस्ट ने, एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट ने बेचना शुरू किया, ऑक्शन करना शुरू किया, और लोगों ने उसको खरीदा। लाइक पीपल हैव गॉन सो क्रेजी अबाउट ट्रेविस केल्सी एंड टेलर स्विफ्ट वेडिंग, और फॉर देयर मदर, या आई एम नॉट टॉकिंग द रियल मदर, बट टेलर स्विफ्ट के जितने भी फैंस हैं, वो उनको मदर कह के बुलाते हैं। जी हाँ, सो या मैं यही सोचती हूँ कि उनकी खुद की मदर क्या सोचती होंगी कि हेलो हेलो, मैंने इनको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और ये किसी और को मदर बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। बट द थिंग इज की दे कॉल हर मदर एंड दैट इज द थिंग। सो टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी हुई मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। जो रिसेप्शन हुआ उसके बाद उसका जो ट्रैश था वो एक न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट ने बेचना शुरू किया और लोगों ने उसे खरीदा भी। लाइक उस आर्टिस्ट ने बहुत सारे पैसे कमाए। अब वही आर्टिस्ट जिसने टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी का गार्बेज या ट्रैश जो है वो बेचा था, अब वो वर्ल्ड का फाइनल का ट्रैश बेच रहा है एंड पीपल आर बाइंग इट। जी हाँ, या आपने सही सुना, नाउ पीपल आर बाइंग वर्ल्ड का फाइनल स्टेडियम्स ट्रैश। क्यों? क्योंकि वो वैसे तो उसका पार्ट बन नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि चलो कचरा ही खरीद के पार्ट बन जाते हैं। आप लोग बोलोगे क्या चल रहा है दुनिया में। मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में, बट या इट इज व्हाट इट इज। सो ये जो न्यूयॉर्क का आर्टिस्ट है जिसने, मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेविस केल्सी और टेलर स्विफ्ट की शादी का जो ट्रस्ट था वो बेचा था, उनका नाम है जस्टिन जिगनैक और उन्होंने अब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का जो कि मेटलाइफ स्टेडियम में हुआ था उसको लिमिटेड एडिशन जो है वो 100 कलेक्टिबल आर्टवर्क्स में बनाकर जो है उसे बेचना शुरू किया है। उसको प्राइस उन्होंने किया है $35 ईच एंड द लेटेस्ट रिलीज इंक्लूड्स लिटर कलेक्टेड आफ्टर स्पेन्स एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री ओवर अर्जेंटीना इन व्हाट मैनी बिलीव कुड हैव बीन लियोनेल मेसीज फाइनल वर्ल्ड कप। या आपने सही सुना, सो $35 का जो है ये रखा गया है और ये 100 जो है वो कलेक्टिबल आर्टवर्क्स जो है वो रखे गए हैं। अब 100 × 35 आप खुद ही कर लीजिए कितना पैसा कमाने वाला है इंसान, और इससे ज्यादा भी कमा सकता है बिकॉज यू नेवर नो, इंसान कुछ भी कर रहे हैं, इंसान कुछ भी खरीद रहा है। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब एक फरमाइशी गीत यहाँ पर प्ले करने का वक्त आ गया है। और ये फरमाइशी गीत जो है वो फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है राधा तेरी चिनरी। जी हाँ, एंड आई थिंक ये राधा जो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना है उसके बारे में बात हो रही है। सो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से गाने को फरमाइश करने के लिए। पूजा जी हमेशा बहुत ही प्यारी फरमाइशें करते हैं, सो ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे प्रोग्राम को। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों की फरमाइशों से जो हमारे इस प्रोग्राम में एलिमेंट ऐड होता है वो तो मतलब कोई भी चीज नहीं कर सकती। सो या इट इज अनबीटेबल एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल। सो या अपना ये खूबसूरत सा योगदान जो है वो जारी रखिए हमारे इस प्रोग्राम में। एंड थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो, जैसे lease का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ. क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है पॉलिटिकल फ्रंट में, और ये सारी चीजों के बारे में बात हम करने वाले हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुरी खबर से. जी हाँ, जो कि हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, हमारे नेचर से रिलेटेड है और खासकर हमारे जंगलों से रिलेटेड है. जी हाँ, फ्रांस के जंगलों में लगी आग बोर्डो शहर के करीब पहुंच गई है. राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया हालात कितने भयावह हैं. जी हाँ, फ्रांस में जंगलों की आग अब इसके दक्षिण पश्चिमी शहर बोर्डो से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है. बोर्डो के मेयर ने कहा है कि वो हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है. मेयर थॉमस कोजेना ने कहा कि अगर और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया जाता है तो हम बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की तैयारी कर रहे हैं. गिरोंद क्षेत्र के आग प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि देश अब तक की अभूतपूर्व जंगल की आग का सामना कर रहा है. उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भीषण आग बताया है. जी हां, फ्रांस में अब तक 2.20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है. वहीं स्पेन में मैड्रिड के पश्चिम में बेकाबू आग के कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है. मंगलवार को एक भीषण लू आने की आशंका है जिससे आग बुझाने के अभियान में और मुश्किलें आ सकती हैं. और इससे पहले फ्रांस के गृह मंत्री लारा नुनेज ने कहा था कि ये आग अब अपने ही तरीके से फैल रही है और उस पर काबू पाना बेहद बेहद मुश्किल हो गया है.

जी दोस्तों, इसी के साथ नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर ममदानी ने अब क्या कहा। जी हाँ, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। ममदानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में पड़ने से में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ममदानी ने नेतन्याहू की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों को टालते हुए ये बात कही जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़ी पिछली टिप्पणियों पर चर्चा की थी। तो ममदानी ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता न्यूयॉर्क के सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए सितंबर में आखिर में न्यूयॉर्क जाएंगे। उन्होंने ममदानी पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया था। जोहरान ममदानी ने उन्हें न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया था। उन्होंने माना था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर नेतन्याहू को गिरफ्तार कराने का कानूनी अधिकार उनके पास बिल्कुल भी नहीं है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कंगना रनावत की मुश्किलात जो है वो खत्म होने के नाम नहीं लेती, और कंगना रनावत का मुंह भी जो है वो पीछे नहीं हटता। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल देती है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा देश जो है वो उनके पीछे पड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ फिर से हुआ है। जी हाँ, सो अपेरेंटली कंगना रनावत भी कभी कभार डोनाल्ड ट्रंप वाले काम कर देती है। मतलब ऑफकोर्स वो बुरा नहीं कर रही है, बट द थिंग इज कि वो गलत बोल देती है और इसकी वजह से लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर कंगना रनावत ने जेनजी को कहा है जेनरेशन गटर, तो लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, अब क्या है माजरा, आइए जरा जानते हैं। सो बीजेपी की ये सांसद है, मतलब कंगना रनावत इज नॉट जस्ट एन एक्ट्रेस बट शी इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। जी हाँ, सो बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत ने जेनजी पर विवादित टिप्पणी की है। कंगना रनावत ने प्रदर्शनकारियों को, जो कि अभी प्रोटेस्ट में, नीट एग्जाम लीक के प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे जेनजी लोग, उनको जनरेशन गटर और कॉकरोच कहा। उनके इन बयानों पर कांग्रेस और IMIM नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की ओर से साझा किए गए वीडियो और पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा कि उन्हें देखकर उल्टी आने लगती है। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की है। एक अन्य पोस्ट में कंगना रनावत ने प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये पश्चिम सोच से प्रभावित भारतीय महिलाएं हैं। उनका कहना था कि ये महिलाएं नशा करने, शराब पीने और माता पिता की कमाई पर निर्भर करने रहने को अपनी आजादी बताकर वार्ता करती हैं। उनकी इसी टिप्पणी की काफी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया या इतने छात्रों ने आत्महत्या की, तब इस महिला ने एक शब्द नहीं कहा। कांग्रेस और IMIM ने भी उनकी टिप्पणी का विरोध किया। IMIM नेता वारिस पठान ने कंगना की भाषा की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की है। छात्रों के आंदोलन पर कंगना रनावत इससे पहले भी टिप्पणी कर चुकी हैं। जी हाँ, सो बेसिकली कंगना रनावत ने जो कहा है वो गलत कहा है डेफिनेटली, लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि कंगना रनावत कभी कभार ज्यादा ही गड़बड़ कर देती है। जी, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा ट्रम्प रोस्टिंग सेशन में आपका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। तो आप भी जरा सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम करेंगे रोस्ट ट्रम्प को। क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल है ट्रम्प को लेकर कि आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, हम तो एक स्टैंड अप वर्जन कर सकते हैं ट्रम्प को रोस्ट करने का। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिस्टर ट्रम्प की, जो कि लिटरली बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें उसमें फनी भी है। सो ऑफ कोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो उन्होंने डॉलर के सिक्कों पर अपनी फोटो छपवा दी है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये तो वो वाली बात हो गई, तेरे मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेबिकॉल से। जी हाँ, पर यहाँ पर फेबिकॉल से नहीं चिपका रहा है ये ट्रम्प, और ना ही किसी के सीने पर चिपका रहा है। आई एम ग्लैड किसी के सीने पर नहीं चिपका रहा, बिकॉज ही कैन लिटरली डू इट। जी हाँ, मतलब देंगे यहाँ पर वो सिक्कों पर जो है, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे डॉलर की वर्थ को, उस

उन्होंने अपनी फोटो जो है वो लगा दी है। आप लोग बोलोगे कि पर ये तो रूल है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में कि कोई भी लिविंग प्रेसिडेंट जो है वो डॉलर पर कभी भी अपनी फोटो नहीं छाप सकता। आप लोग बोलोगे कि हाँ वैसे रूल तो था, अब कहाँ गया रूल? रूल गया झरने में तैर रहा है रूल। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि बात तो सही है, ट्रम्प कैन डू लिटरली एनीथिंग। मतलब ये बंदा जो है हर जगह पंगा ले रहा है, कुछ नया काम कर रहा है। अच्छा, सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में, उनसे $200 बिलियन की फंडिंग ले ली वापस। कहां पर? AI में लगाने के लिए। अब कोई बोले कि ये AI बबल जब फटेगा तो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे पोती नातों की पढ़ाई कौन करेगा? AI? जी हाँ, ये वो करवाएगा। बट नहीं, ट्रम्प को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इट्स लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना डू समथिंग वेरी गुड, आई एम सो कूल, आई एम द कूलेस्ट प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री। एंड वो कूल कब धूल हो जाएगा हमें नहीं पता। बट आज मेरी बात हो रही थी, मेरी बहुत ही प्यारी लिसनर है उनके साथ, एंड शी वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, पता नहीं क्या रहा है दुनिया में, लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा खरीद रहे हैं, बच्चे म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ वाली किताबें पढ़ रहे हैं, और ट्रम्प उसने भी सबके साथ ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। well, बात तो सही है, ट्रम्प टॉप्स एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक हाँ बात तो सही है। अच्छा, एक और नई चीज की है। जी हाँ, अब सोशल मीडिया से कुछ दिन की दूरी बनाई हुई थी इस इंसान ने, लेकिन फिर से वापसी कर ली है। जी हाँ, और एक ईरान को उड़ाने वाली AI इमेजेस की स्प्री जो है उन्होंने शेयर की है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। जी हाँ, of course truth social पर, because that's where he does all the things। जी हाँ, तो ट्रंप ने जो है वो AI इमेज वॉर्स जो है, इमेजेस जो है, जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर की जो इमेजेस हैं AI वाली, वो शेयर किए, जहां पर वो फाइटर जेट पर खुद ही बैठे हुए हैं। जी हाँ, देखने से मुझे ऐसा लग रहा है B-2 बॉम्बर पे वो बैठे हुए हैं। जी हाँ, और उन्होंने अपने आप को लिखा हुआ गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड। ओ माई गॉड, ये सेंटेंस बोलने के बाद तो मुझे लगता है कहीं ऊपर से बिजली आके मेरे ही सर पे ना गिर जाए कि नहीं भैया शर्मा ठीक है इसने बोला, पर तुम मत बोलो, बिकॉज ये बहुत ही गलत सेंटेंस है। या बट That's what it is. जी हाँ, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड में बड़े ही अच्छे से ट्रंप जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं। वहां पे दिख रहा है B-2 बॉम्बर और उनके फाइटर जेट्स, और यहां वहां हर जगह से उड़ रहे हैं, और उन्होंने दिखाया हुआ है गार्डियन एंजल ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, और ईरान को एकदम खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करती हुई वो इमेजेस जो है वो नजर आ रही है। अगर आपने नहीं देखी, आई थिंक यू शुड रियली सी इट, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट्स फनी और नॉट, बट वेन वी सी इट, लाइक अगर हम ट्रम्प के परस्पेक्टिव से देखें उसको, तो ये क्या फनी इंसान है। मतलब ट्रम्प के परस्पेक्टिव से देखने की जरूरत नहीं है, हम सबके परस्पेक्टिव से भी देखेंगे तो भी हमें ऐसा लगे क्या इंसान है। ईरान लिटरली धज्जियां उड़ा रहा है इसके, लेकिन फिर भी यू नो वॉट, आई एम गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जब इनको लगता है कि अब मैंने वॉर जो है वो जरा आगे को धकेल दिया, तो ये गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड बन जाते हैं। इनको लगता है ओह यू नो वॉट, मैं तो आप सबको बचा रहा हूँ, मैं आप सबका मसीहा हूँ। अरे मसीहा नहीं है, चिया है, चिया। जी हाँ, यहाँ पर गुडबाय इंजन रूम की एक तस्वीर भी शेयर की है इस इंसान ने। जी हाँ, जहां पर अगेन ईरान का एक झंडा लगा हुआ एक शिप है और उसको बॉम्ब करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है अमेरिका। और या सो गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, प्लीज आप हमें बताइएगा अपनी भाषा में। और यहाँ पर ट्रंप की भाषा तो हमारी समझ के परे है, बिकॉज मुझे लगता है थोड़े दिनों में ट्रंप को एलियंस का प्रेसिडेंट बनने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो वे कि हम ये इंसान को फिर से जो है वो लाना चाहेंगे। बट बात यह ना कि हमारे हाथ में नहीं है, हाथ में जिनके उन्होंने कल्याण कर दिया है। भाई बात तो सही है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, म्याऊ म्याऊ पड़ रहे हैं और ट्रंप को इलेक्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। बट गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड, I think that's way too far-fetched. What do you think about it? जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी दोस्तों, और इसी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले एक ब्रेक ले लिया जाए या पहले बात कर ली जाए। चलिए ब्रेक ले लिया जाए या बात कर ली जाए, ब्रेक ही ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बात जरा लंबी हो जाएगी और हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक साथ होगी तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन पहले लेते हैं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
8: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
7: अच्छा, वो क्या?
8: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
7: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
8: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में, जो कि रिलीज हो चुका है और काफी स्टार स्टडेड अफेयर ये रहा, और ऑफ कोर्स लोगों की नजरें जो है वो इस पर बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मुझे लैक करती हुई नजर आ रही है वो है वो सौम्यता, जी हाँ, वो जो आंखें हैं, मतलब आप जब भी राम जी के बारे में या लॉर्ड राम के बारे में बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा खूबसूरत सा चेहरा आपके सामने आएगा जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा मासूमियत और वो दयावानता जो है वो उनकी आंखों में ही नजर आएगी, वो काइंडनेस जो है वो उनकी आंखों में नजर आएगी। और अभी तक हमने जितने भी रामायण के वर्जन देखे हैं कहीं ना कहीं उस चीज ने सर्व भी किया है। लेकिन ये वाला जो रामायण है, नो मैटर इसके VFX में कितना भी काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट रणबीर कपूर राम, लॉर्ड राम, भगवान राम की आंखों में जो सौम्यता है वही लैक कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये तो एक अलग ही टॉपिक है कि रणबीर कपूर को लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले करना ही नहीं चाहिए था, मतलब बनता ही नहीं था उनका, ऑफ कोर्स चेहरे के साथ भी, उनके एक्सप्रेशंस के साथ भी और बाकी दूसरी चीजों के यू नो फ्रंट पे भी। बट द थिंग इज कि यहां पर उन्होंने किया और वो चीज, वो अग्रेसिवनेस जो है वो उनके चेहरे पर नजर आ रही है, वो सौम्यता, वो शलीनता जो है जो भगवान राम के चेहरे पे होती है वो आपको इसमें नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स साई पल्लवी सीता के कैरेक्टर में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं और जितने भी और लोग हैं उन्होंने भी जो भी दिख रहा है ट्रेलर में वो ठीक लग रहा है VFX के फ्रंट पर। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि इंडियन मूवीज अगले 4, 5 या 10 सालों में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगी, सो मैं VFX पर नहीं जाती हूँ हमेशा। बट द थिंग इज कि यहाँ पर अगर दूसरी चीजों के बारे में बात की जाए, एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में बात की जाए, तो मैं डेफिनेटली सनी देओल से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और भी बहुत सारे एक्टर्स से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, राणा दुगुपति से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है एज अ रावण के कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहां पर रणबीर कपूर एज भगवान राम, क्या आप उस चीज को डाइजेस्ट कर भी पा रहे हैं? बिकॉज आई कांट। टेल मी अबाउट योर थॉट्स, और क्या आपने ट्रेलर देखा या नहीं देखा जरूर देखिए और मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ पर एक और गाना जो कि रिकमेंडेड सॉन्ग है, जी हाँ, ये हमारी तरफ से नहीं है, रिकमेंडेड सॉन्ग है और ये रिकमेंडेशन बहुत ही स्पेशल इंसान की तरफ से आया, जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से ये रिकमेंडेशन आया है। गाने का नाम है मैं निकला गड्डी लेके, एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज कि ये सर अपने लिए ही प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, बट सर आजकल एक बहुत ही जबरदस्ती जर्नी पर निकले हैं और उस जर्नी का कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एंजॉय करना है राइड को, मतलब वो जो जर्नी है उसी को एंजॉय करना, वही सर जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, मतलब ही इज लिटरली लिविंग हिज बेस्ट लाइफ इन हिज यू नो कैरवन, एंड यहाँ पर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, खूबसूरत जगहों पर कैंपिंग करते हैं और उन खूबसूरत तस्वीरों को हमारे साथ शेयर भी करते हैं, एंड यू नो व्हाट आई फील कि यही लाइफ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि बस कहीं चले जाना है, निकल जाना है इस जद्दोजहद को छोड़कर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपने काम को छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ को छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इसका ड्रीम या सपना देखा है कि आप जाना चाहते हैं कहीं पर, इंसान या इंसानों का कोई नामो निशान ना हो, बस नेचर हो, खूबसूरती हो, आप एकदम वाइल्ड में हो, आप खाना बनाओ, नेचर की यू नो बाहों में बैठकर उसे खाओ, अगर ये आप करना चाहते हो तो यू कैन लिटरली डू इट। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़े से इंतजाम करने हैं और आपको अपना इरादा जो है वो पक्का करना है, बिकॉज इट इज अ वेरी फन थिंग, एंड यू नो व्हाट सर, आई एम क्वाइट इंस्पायर्ड जो भी आप कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, और जहां भी है वहां से गाने रिकमेंड कर रहे हैं, सो आई वुड से कि ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, सो थैंक यू सो मच सर इस जबरदस्त सी फरमाइश के लिए, और आप खुद भी निकल चुके हो गड्डी लेके तो फिर आपके लिए ये गाना तो बनता है।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Fire ants, tuhade ilake vich maujood hain. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di soochna deo. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ।
4: ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਇਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕਿਡਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੋਰ ਕਿਡਸ ਆਰ ਗਨਾ ਲਵ ਇਟ ਸੋ ਮੱਚ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मूवी है एक शेपर्ड के बारे में जो कि अपनी भेड़ों के साथ, अपनी शीप्स के साथ जो है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रहता है। उसकी शीप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो उनको किसी भी बुरी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब उनके मीट के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उनको उनका वूल जो है अपनी शीप्स से जो है वो लेता है। नाउ ये शेपर्ड का कैरेक्टर जो है वो ह्यूग जैकमैन जो है वो प्ले कर रहे हैं। ह्यूग जैकमैन वही हैं जो कि आपके द वॉल्वरिन है। द वॉल्वरिन कौन है, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपने वॉल्वरिन को तो देखा ही होगा। नाउ ह्यूग जैकमैन इज अ वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मर एंड यू नो कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। यहां भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, ऑल्दो बहुत ज्यादा रोल उनका इस मूवी में नहीं है क्योंकि अपेरेंटली वो मूवी की स्टार्टिंग में ही और कुछ देर में ही जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, और बेसिकली डेथ नहीं होगी उनकी, एग्जैक्टली मर्डर होगा। नाउ व्हाट मेक दिस मूवी इंटरेस्टिंग इज इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल एनिमेटेड मूवी, इट्स अ रियल वर्ल्ड मूवी एंड अ एनिमेटेड वर्जन जो है वो भी इसमें आपको मिलेगा क्योंकि शीप्स जो है वो आपको रियल शीप्स इसमें नहीं दिखेंगी लेकिन वो आपको रियल शीप्स की तरह ही लगेंगी। अब एक ऐसा शेपर्ड जो अपनी शीप्स को बहुत ही प्यार से रखता है, उनको नॉवेल्स रीड करता है। जी हाँ, डिटेक्टिव और मर्डर मिस्ट्री नॉवेल्स जो हैं वो रीड करता है। उसकी भेड़ें जो हैं वो रोज रात को उसको बैठ के सुनती हैं और फिर अपने अपने घर जो है वो चली जाती हैं। लेकिन एक दिन जब उनका शेपर्ड जो है वो उठता नहीं है तब उन्हें पता चलता है कि ओ, उनके शेपर्ड को किसी ने मार दिया है। पहले उन्हें डाउट नहीं होता है लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने उनके मुंह से, जॉर्ज के मुंह से, क्योंकि जॉर्ज जो है वो नाम है इसमें ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर का, वो उनके मुंह से उन्होंने सुना होता है कि कैसे जो है वो मर्डर्स जो है वो होते हैं और उसके बाद जो है वो क्रिमिनल जो मर्डरर है वो क्या क्या करता है। तो उसकी शीप्स देखती हैं कि कोई जस्टिस जो है वो जॉर्ज को नहीं मिल रहा होता उस टाउन में, तो वो खुद डिटेक्टिव बनती हैं। जी हाँ, वो सारी की सारी नॉवेल्स जो कि जॉर्ज उन्हें रीड करता है वो उन्होंने समझी होती हैं। उसे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भेड़ों को कुछ ऐसे नॉवल सुना रहा है और उनका फन हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था, यानी कि ह्यूग जैकमैन को ये नहीं पता था कि वो जो शीप्स हैं उसकी वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर रही हैं और वो आधी से ज्यादा डिटेक्टिव बन चुकी है। फिर वो जॉर्ज को जस्टिस दिलाने के लिए सारी की सारी डिटेक्टिव गिरी करती है एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ मिस्ट्री मूवी। ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट मूवी, यू आर गोना लव इट। बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है सबसे, सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, खूबसूरत है स्टोरी, और जैसे मैंने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं. वेल ऑफकोर्स इट्स अ मर्डर मिस्ट्री बट इट्स नॉट अ वेरी डार्क डार्क मूवी, सो यू कैन एंजॉय इट विद योर किड्स. जी हाँ, इसी के साथ ये है शेप डिटेक्टिव की थोड़ी सी रिव्यू जो मैंने आपको दिया, और इसी के साथ यहाँ पर अब अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है. लेकिन इसी के साथ ऑफिशियली हम शुरू कर लेते हैं ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट को, क्योंकि जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ अभी वो ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का ही पहला गाना होगा. गाने का नाम है जब कोई बात बिगड़ जाए. जी हाँ, यही गाना सुनने वाले हैं और इसी से ही शुरुआत करने वाले हैं. इट्स अ कल्ट फेवरेट, सो ऑफकोर्स यू आर गोना लव इट वे मोर देन एनी अदर सॉन्ग. एंड या दैट्स हाउ वी गोना स्टार्ट द ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट. आपकी जो फरमाइश है पुराने गानों से रिलेटेड वो भी जल्दी से ले आइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, और मैं आपको किससे भी सुनाऊंगी जो कि होंगे पुराने. सो आइए जल्दी से, और पहला गाना आप सबके लिए.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शेनिवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट चल रहा है। सो ऑफ कोर्स गाने पुराने होंगे, लेकिन साथ में किस्से भी पुराने होंगे। जी हाँ, ये किस्सा है बेसिकली राजकुमार का। जी हाँ, राजकुमार कितने अकड़ू एक्टर थे इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम आपको पहले ही काफी किस्से सुना चुके हैं। मतलब वो अकड़ू भी थे और वो पंगेबाज भी थे। उन्होंने तो दिलीप साहब से भी पंगा ले लिया था, और बड़े बड़े और डिफरेंट डिफरेंट एक्टर से पंगा ले लिया, और हमेशा अपनी टांग ऊपर रखा करते थे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। जी हाँ, ऑफकोर्स जो आपने उनकी एक्टिंग देखी है ना फिल्मों में, वो रियल में भी वैसे ही थे। लेकिन अगर आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि वो पहले एक पुलिस ऑफिसर थे। जी हाँ, वो पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने पुलिस की जॉब को छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। 1952 से लेकर 1957 तक उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, क्योंकि वो एक्टर तो बनना चाहते थे लेकिन उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही थी। बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल वाला पीरियड उनके लिए वो रहा। लेकिन उस पीरियड के दौरान उन्हें ये समझ आ गया कि अगर मुझे अच्छे से अपने आप को सुपरस्टार बनाना है और इस खूबसूरत सी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना है, तो मुझे एक अच्छी आवाज चाहिए। एंड व्हेन आई से अच्छी आवाज, उन्होंने यही सोचा कि मुझे एक ऐसे सिंगर की आवाज चाहिए जो कि मेरी आवाज बन सके। जी हाँ, ऑफ कोर्स उनके डायलॉग्स में उनकी आवाज आपने सुनी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही एक ईगो जो है और एक जो है स्वैग उनकी आवाज में आता है। लेकिन उनके गाने जो है वो हमेशा से रफी साहब ने गाए, और उनको ये चीज समझ आ गई कि अगर मुझे अच्छे से कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है तो मुझे एक अच्छे सिंगर की आवाज जो है वो चाहिए। और उन्होंने रफी साहब को चूज किया। उन्हें समझ आ गया था कि रफी साहब की आवाज अगर उनके साथ रहेगी तो डेफिनेटली वो हमेशा से बहुत अच्छा जो है वो काम कर पाएंगे और आगे जाकर बहुत बड़े सुपरस्टार भी बन पाएंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने रफी साहब की आवाज को ही अपनी आवाज बना लिया। और एक वक्त आया 1959 का। जी हाँ, 1959 मूवी का नाम था उजाला, और इसमें वो काम कर रहे थे माला सिन्हा, शमी कपूर और बहुत सारे और एक्टर्स के साथ, गजब के एक्टर्स के साथ। अब वहां पर ऐसे तो उनके गाने रफी साहब गाया करते थे, लेकिन यहाँ पर शमी कपूर बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो उजाला में शमी कपूर के जितने भी गाने थे और उनका वाला पार्ट जो है उन्होंने कह दिया पहले ही कि रफी साहब मेरा पार्ट गाएंगे और बाकी राजकुमार का जो पार्ट है वो मुकेश गाएंगे। अब ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, उन्हें लगा कि ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा वाला पार्ट जो है वो रफ़ी साहब गाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि रफ़ी साहब की ही आवाज़ जो है वो उन्हें सुपरस्टार बना सकती है। फिर क्या था, ये मूवी जो है वो पूरी तरह से शूट हो गई और शमी कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब बने और राजकुमार की आवाज़ जो है वो बने मुकेश। लेकिन इसके बाद वो शमी कपूर से इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने उनके साथ कभी ना काम करने की जो है वो ठान ली। ये फैसला उन्होंने ले लिया और लिटरली उन्होंने शमी कपूर को बायकॉट कर दिया फॉर लाइफ। एग्जैक्टली उसके बाद जो है जब वो सुपरस्टार बन गए, उन्होंने बहुत सारी मूवीज जो है वो खुद चुनना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो पाकिजा हो, लैला मजनू हो और बहुत सारी और मूवीज जो है वो उस वक्त हुई। लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही मेरी आवाज़ बनेंगे और अगर किसी ने रफ़ी साहब को मेरी आवाज़ नहीं बनने दिया तो मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं है, एक ऑफकोर्स ये है फरमाइशी गीत और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर प्रेमांशी जी की तरफ से। गाने का नाम है और दूर के मुसाफिर। जी हाँ, गाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, रफ़ी साहब ने इसे गाया है, दिलीप साहब की फिल्म का ये गाना है उड़न खटोला का। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी हमेशा की तरह खूबसूरत और जबरदस्त फरमाइशें करने के लिए, अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए, कीमती रिकमेंडेशंस हमें देने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।
6: जिंदगी

दोस्तों, मुझे नहीं पता आपने इस मूवी को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने इस मूवी को नहीं भी देखा है, जो गाना मैंने आपको सुनाया ओ दूर के मुसाफिर, आप इसकी वीडियो देखिएगा। और उड़न खटोला मूवी का ये गाना है, एंड में आपको इसकी वीडियो के एंड में उड़न खटोला ही नजर आएगा। जी हाँ, वो उड़न खटोला जो कि ले जाएगा खूबसूरत तरीके से आपको बादलों में। जी हाँ, ये गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दिलीप साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी पिक्चरें करी और अपनी एक्टिंग का कायल उन्होंने लोगों को बना दिया। जी हाँ, लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ कि सिर्फ एक्टर अच्छा होना काफी नहीं है, इंसान अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिलीप साहब की जब भी बात होती है, उनके फैंस में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और बड़े बड़े सुपरस्टार्स आपको नजर आएंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई दिलीप साहब का नाम क्यों लेता है। वेल, दिलीप साहब का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो खूबसूरत एक्टिंग तो करते ही थे, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी ज्यादा प्यारी थी कि आप उनके फैन हो जाओ। मतलब आप खुद सोचो कि उनकी बीवी यानी कि उनकी बेगम ने इतना तक कह दिया था, सायरा बानू ने इतना तक कह दिया था कि मैं सिर्फ एक ही सपना देखा करती थी बचपन में। मैं एक्चुअली दो सपने देखा करती थी, दो चीजें मेरे सपनों में आती थी, और वो थी एक कि मैं अपनी माँ की तरह जबरदस्त एक्ट्रेस बन सकूं, उतनी ही पावरफुल, उतनी ही कंपेलिंग एक्ट्रेस बन सकूं, और दूसरी मैं दिलीप साहब की जिंदगी का हिस्सा बन सकूं। जी हाँ, आप खुद इमेजिन कीजिए कि सहारा बानो कितने ज्यादा प्यार में रही हैं दिलीप साहब के साथ। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कि रेवर्ड है पूरी दुनिया में, सब लोग जो है उन्हें प्यार करते हैं, सब लोग कहते हैं कि इतना प्यारा इंसान, इतनी अच्छी शख्सियत का इंसान कहाँ मिलेगा, और आपको उनके साथ जिंदगी बिताने का मौका मिल जाए, क्या बात है, राइट? सो अगेन, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं सिर्फ वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इंसान कितने अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इंसान अगर अच्छे होगा कोई, तो उसे दुनिया से रुखसती के बाद भी याद किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं, अगेन एक रिकमेंडेड सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत रिकमेंडेशन है। गाने का नाम है जो बात तुझ में है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं।

क्या बात है, खूबसूरत गाने, ये खूबसूरत समा और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी रिकमेंडेशंस और फरमाइशें. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों की जो फरमाइशें होती हैं ना, जो रिकमेंडेशन होती है, वो हमारे इस प्रोग्राम को खास बनाती हैं. सो या आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं मैं बोलती. दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे अब आपसे कल. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रुसवानी 1701 AM. बट अगेन आपको यही कहना चाहूंगी कि हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए एंड खाते रहिए. बेसिकली खुश रहिए, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गाने का नाम है छुपा कर मेरी आंखों को. आप सबके लिए बाय बाय. सी यू. टाटा.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन जवी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन क्लॉक लॉन्च। ब्रिस्बेन के क्वीन स्ट्रीट मॉल में 2032 ओलंपिक खेलों का 6 साल का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान मेयर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के लोकप्रिय इबिस पक्षी को भी ओलंपिक का शुभंकर बनाया जा सकता है। वहीं ब्रिस्बेन का फैशन ब्रांड ब्लैक मिल्क का बड़ा फैसला। जी हां, ब्रिस्बेन का मशहूर क्लॉथिंग ब्रांड ब्लैक मिल्क अब अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर रहा है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी अब अपने कपड़ों का उत्पादन विदेश में करेगी। हालांकि इसके डिजाइन का काम ब्रिस्बेन स्टूडियो से ही चलेगा। वहीं मॉर्टन आइलैंड पर बर्ड फ्लू का संदिग्ध मामला। ब्रिस्बेन के पास मॉर्टन आइलैंड पर एक मृत समुद्री पक्षी में H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि का संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को की रिपोर्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची में डालने से रोक दिया है। हालांकि उन्होंने क्वींसलैंड सरकार के को जंगलों की कटाई रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीक डाउन्स माइन में दुखद हादसा। क्वींसलैंड की पीक डाउन्स माइन में आज सुबह वाहन दुर्घटना में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। माइनिंग कंपनी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ओरिजिन एनर्जी ग्राहकों के लिए डेटा अलर्ट। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ऊर्जा प्रदाता ओरिजिन एनर्जी ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है कि एक साइबर हमले के दौरान कुछ बैंक डाटा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बड़ी बातचीत। नीट और एग्जाम लीक मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में आज बड़ा अपडेट आया है। सरकार और छात्र नेताओं के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं अमेरिका का भारतीय सामानों पर नया टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 10% का नया आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड नियमों का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं DRDO की मिसाइल कुशा का सफल टेस्ट। भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक बड़ी ताकत मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऐसे के साथ गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि पटना में गंगा नदी के किनारों पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 6 हफ्ते के भीतर पूरी तरह साफ किया जा सके। वहीं शिक्षकों के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की राहत। दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची और चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े सरकारी कामों का असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा।

0: हाँ, मिडल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक रास्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और समुद्री निगरानी ठिकानों पर लगातार 13वें दिन हवाई हमले किए हैं। वहीं शी जिनपिंग करेंगे अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 दिसंबर को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी के साथ विमानन संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी सादिया जहीदी, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में इतिहास रच दिया है। सादिया जहीदी को इस वैश्विक उड्डयन संस्था की पहली महिला प्रमुख चुना गया है। वहीं स्पेन में जंगलों की आग बुझाने का अनोखा तरीका। स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है। वहां प्रशासन गधों की मदद से जंगलों की सूखी घास चरवा रहा है, ताकि गर्मी के दिनों में झाड़ियों में अचानक लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ सलमान रुश्दी ने कोर्ट में दर्ज करवाई गवाही। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने साल 2022 में न्यूयॉर्क में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में चल रहे ट्रायल के दौरान अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई है। इसके साथ नेपाली सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में बिना कागजात अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में एक अमेरिकी नागरिक और एक संदिग्ध अलगाववादी कार्यकर्ता शामिल है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत हो गई है। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। हरारे में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष। भारत के पूर्व विश्व चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक्शन से भरपूर शुरुआत। ग्लासगो में आज भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग जिम्नास्टिक और स्विमिंग के खिलाड़ी एक्शन में हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में आज भारत के पास पदक जीतने के कई मौके रहेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
7: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
6: ऐसा क्या खास है वहाँ?
7: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
6: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
7: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीदा सी। फिल्म दा म्यूजिक आईजी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों नूं कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिस दे कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाणियां ने फिल्म नूं यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्के फुल्के फिल्मां दे विचों एक है।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो ओमसॉग से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई ओमसॉग केयरिंग विद डिग्निटी
3: ओनली गॉड कैन जज मी दैट राइट ओनली गॉड बेबी नोबडी एल्स
4: एयो शान
5: तंदी खिती आत नख दी नक तक मेरे राहों दी मकामा नाल ओ मेरे राहों दी मकामा नाल पक ठक सहज सुभा नु

0: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में।

हरे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। वैदिक साहित्य से इस जगत की रचना के विषय में जो हम पिछले सप्ते विवरण दे रहे थे, उसी को आज हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने कहा था, श्रीमद् भागवतम में ये प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक परम सत्य भगवान पर एकाग्र मन से ध्यान लगा रहे थे, और इस तपस्या के फलस्वरूप वो उस ज्ञान को अर्जित कर सके जिसके द्वारा उसे स्वयं भगवान अपने अंदर दिख रहे थे, जिन्हें वो पूर्व में बहुत प्रयास करने पर भी देख न सके थे। तो 100 वर्षों तक ध्यान लगाने के बाद वे सभी कारणों के परम कारण को समझ सके। फिर उन्होंने प्रामाणिक ब्रह्म संहिता की रचना की, जिनमें वे गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद जो आदि पुरुष है उसे मैं भजता हूं। तो भगवान को हम तब जान सकते हैं और तब उनकी सेवा में लग सकते हैं जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। अर्थात उनको समझना या उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना, ये सब उनकी कृपा से ही होता है। तो जैसे हमने कहा था, ब्रह्मांड के अंदर जो आधा ब्रह्मांड गर्भोदक सागर से भरा हुआ है, उस सागर के ऊपर ब्रह्मा जी ने उस समय देखा एक विशाल सफेद कमल के फूल जैसा शैया, जो कि वास्तव में शेषनाग स्वयं थे, और उस शेषनाग पर भगवान स्वयं अकेले लेटे थे। शेषनाग के अनेकों शीश थे और प्रत्येक शीश पर एक मणि सुशोभित था। इन सब मणि रत्नों से निकलता हुआ प्रकाश या तेज उस स्थान के घने अंधकार को दूर कर रहा था। फिर भगवान ने अपने चरण कमलों को दिखाया उन्हें ऊपर उठाते हुए। ये चरण कमल सभी वरदानों का स्रोत है, जिन्हें भौतिक दूषण से मुक्त भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे वरदान उनके लिए है जो कि उन्हें शुद्ध प्रेम और भक्ति के द्वारा पूजते हैं। उनके चंद्र जैसे पांव और उंगलियों के नाखून की दिव्य किरणों की शोभा एक कमल के फूल के पंखरियों के समान दिख रही थी। कदम्ब पुष्प के केसर धूल के समान एक पीताम्बरी वस्त्र भगवान के कमर पर था, और उस पर एक खूब सुशोभित कमरपट्टा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में एक बहुमूल्य हार, भगवान का दिव्य स्वरूप कीमती रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित था। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान को निहारते हुए निर्णय किया कि यही भगवान हरि है। भगवान के वक्षस्थल पर फूलों की माला वैदिक विवेक के मधुर गीत से उनके गुणों को गा रही थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सुदर्शन चक्र के सुरक्षा के कारण सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि

भगवान विष्णु के हजारों मुख, पांव, सिर, आंखें, कान इत्यादि। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि जिस कमल के फूल पर वो स्थित थे वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, और वे विचार करने लगे कि किस प्रकार अनेकों लोकों को वो निर्मित करेंगे जो इसी कमल के फूल में पहले के समय में समा गए थे। ब्रह्मांड में जितने भी लोक है उन सभी के बीज उस कमल में थे जिस पर ब्रह्मा स्थित थे, अर्थात जितने लोक है उन सभी को भगवान ने पहले से ही निर्मित कर दिया था, और जितने जीव प्राणी है वे भी ब्रह्मा में जन्मे थे। तो सारा ये भौतिक जगत और जितने उनमें जीवित प्राणी है उन सभी को पहले से ही भगवान ने रच दिया था पौधों के रूप में, और ब्रह्मा को उन सभी पौधों को सारे विश्व में बिखारना था। इस ब्रह्मांड में जितने लोक या प्लैनेट्स है वे सब 14 भुवन में विभाजित है। ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स विद इन दिस यूनिवर्स आर डिवाइडेड इंटू 14 स्फीयर्स। जो भुवन नीचे है इस ब्रह्मांड में उसे पाताल लोक कहते हैं, जो मध्य में स्थित है उसे भूर लोक कहते हैं, और जो भुवन ऊपर स्थित है उसे स्वर लोक कहते हैं, और उनसे भी ऊपर महर लोक है, तपोलोक है, फिर सत्य लोक है, और फिर ब्रह्म लोक है जिनका प्रलय के जल से विध्वंस नहीं होता। तो जो वास्तविक सृष्टि है उसे सर्ग कहते हैं, और बाद में जो भी कुछ ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा की जीवन की आयु है 311,40,000,000,000 वर्ष। इस अवधि के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है वही महाप्रलय का समय है, और उस समय सभी जीव भगवान विष्णु के स्वरूप में समाते हैं, और फिर दूसरी सृष्टि जब फिर से रची जाती है तब यही सभी जीवात्मा जो विष्णु के स्वरूप में समाविष्ट पड़े थे वे फिर से अपने पिछले कर्म और इच्छा अनुसार इस नव निर्मित सृष्टि में प्रकट होते हैं। सृष्टि की रचना के विभिन्न विभाग मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रीमद् भागवत के 3rd 10th अध्याय में बतलाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ब्रह्मा की रचना को। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इन नियुक्तियों की रचना की। स्वयं को धोखा देना, मृत्यु का आभास, निराशा के कारण क्रोध, उत्तराधिकारी होने का झूठा अभिमान, शरीर होने का भ्रम, अपने वास्तविक पहचान की भूल। इससे पहले के अनेक प्राणियों के विभिन्न शरीरों को रचे या अलग अलग योनि को रचे, ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उन अवस्थाओं को रचा जिनमें इन प्राणियों को इस भौतिक जगत में रहना होगा। जब तक एक प्राणी अपनी वास्तविक पहचान को भूल न जाए उसके लिए इस भौतिक जगत की अवस्थाओं के भीतर रहना असंभव हो जाता है। इसी कारण इस भौतिक जगत में रहने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाए, वो कौन है वही भूल जाए, वो ये भूल जाए कि ये एक आत्मा है, और ऐसा सोचने लगे कि वो ये शरीर है। इस भौतिक जगत में रहने का यही सबसे पहला कंडीशन है। ऐसी भटका देने वाली सृष्टि को एक पाप में कार्य मानकर ब्रह्मा को इस कार्य से प्रसन्नता नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने भगवान पर ध्यान करते हुए अपने आप को फिर से पवित्र किया और आगे सृष्टि का निर्माण करने लगे। तब ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 4 संतों को रचा, सनक, सनंदा, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने संसारिक या भौतिक कार्यों को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्हें प्रकट करने के बाद ब्रह्मा ने उन 4 पुत्रों को कहा, मेरे प्रिय पुत्रों अब तुम प्रजा बढ़ाओ। भगवान श्री वासुदेव के प्रति आसक्त होने के कारण उन्होंने मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाया था, इसी कारण उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। जिन्होंने मोक्ष या मुक्ति का मार्ग अपनाया हो वे भला बंधन को क्यों स्वीकार करेंगे। जब इन 4 कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया तो ब्रह्मा ने अपने क्रोध को अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, फिर भी वो क्रोध फूटकर ब्रह्मा के भौहें यानी आईब्राउज के मध्य में से एक बालक के रूप में तुरंत प्रकट हुआ जिसका सौंदर्य लाल और नीले रंग के

मिश्रण का था, क्योंकि ये बालक जन्म से ही रोने लगा कि हे भाग्य विधाता, हे जगत के गुरु, कृपया मेरे लिए नाम और स्थान नियुक्त कीजिए। कमल के फूल से जन्मे शक्तिशाली ब्रह्मा ने कोमल वचनों से उस बालक को सांत्वना दी और उनकी आग्रह स्वीकार करते हुए उनसे कहा, तुम रो मत, मैं अवश्य ही वैसा करूंगा जैसे तुम्हारी इच्छा है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हें सब लोग रुद्र के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि तुमने चिंताग्रस्त होकर रोदन किया है। हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए रहने के स्थान नियुक्त कर लिए हैं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम इन स्थानों पर रह सकते हो। हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, हवा, आग, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तपस्या में। ब्रह्मा ने उनसे कहा, मेरे प्रिय रुद्र, तुम्हारे 11 और नाम भी होंगे, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी होंगी जो सब रुद्राणी कहलाएगी, और उनके नाम इस प्रकार से होंगे, धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। मेरे प्रिय बालक, अब तुम इन सभी नामों को, स्थानों को तथा अपनी पत्नियों को स्वीकार करो, और क्योंकि तुम सभी प्राणियों के स्वामियों में से एक हो, तुम अब अधिक संख्या में आबादी बढ़ा सकते हो। शक्तिशाली रुद्र ने फिर कई संतानें उत्पन्न की जो कि उन्हीं की तरह रूप में, बल में और क्रोध जैसे स्वभाव में थे। इस प्रकार रुद्र के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किए गए और उनके जो पुत्र हुए, उनकी संख्या अनगिनत थी, और जब वे सब साथ में एकत्र हुए तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो सारे ब्रह्मांड को निगल जाएंगे। जब इन सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा ने ऐसी अवस्था देखी तो वो भयभीत हो गए। उन्होंने रुद्र से कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी आंखों में से जो आग की लिपटे निकल रही है, उसके द्वारा सभी दिशाओं में वो सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं और मुझ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। प्रिय पुत्र, अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप को तपस्या में स्थित कर दो, जो कि सभी प्राणियों के लिए शुभ होगा और तुम्हारे लिए भी आशीर्वादजनक होगा। तपस्या से ही तुम इस ब्रह्मांड को फिर उसी प्रकार से निर्मित कर सकते हो जैसे पहले था। केवल तपस्या के द्वारा ही एक व्यक्ति भगवान की ओर जा सकता है, जो सभी प्राणियों के हृदय में बसे हुए हैं और साथ ही साथ इंद्रियों के पहुंच से भी दूर है। जब ब्रह्मा के द्वारा रुद्र को ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पिता की परिक्रमा की और उनके वचनों को शिरोधार करते हुए वन में प्रवेश कर दिए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा ने उसे प्रलय के समय ही वापस आने के लिए कहा था, जिस समय उनकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ब्रह्मा ने इस जगत में आबादी बढ़ाने के लिए 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। शरीर का सर्वश्रेष्ठ भाग विचार माना गया है, और नारद का जन्म ब्रह्मा के दिव्य विचारों से हुआ था, वशिष्ठ का जन्म उनके श्वास से, दक्ष का जन्म उनके अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से और क्रतु उनके हाथ से, पुलत्स्य का जन्म उनके कानों से हुआ था, अंगिरा उनके मुख से, अत्रि उनकी आंखों से, मरीचि उनके मन से और पुलह ब्रह्मा की नाभि से, और कर्दमा का जन्म ब्रह्मा की छाया से। ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास प्रजा उत्पन्न करने के लिए केवल एक या दो तरीके नहीं है, जिस प्रकार आज इस आधुनिक समय में हमारे पास है। फिर ब्रह्मा ने विपरीत वस्तुओं की भी उत्पत्ति की। धर्म को प्रकट किया गया ब्रह्मा के वक्षस्थल से,
जिसमें भगवान श्री नारायण निवास करते हैं, और अधर्म ब्रह्मा के पीठ से प्रकट हुआ, जहां जीवित प्राणियों के लिए घोर मृत्यु होती है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और पीठ सबसे तिरस्कृत भाग। जब किसी शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो हम अपने छाती को सुरक्षा प्रदान करते हैं और आक्रमण का बोझ पीठ से सहन करते हैं। धर्म और अधर्म किसे कहते हैं वो भी यहां समझाया है। जो भी कुछ भगवान की प्रेम में सेवा की ओर ना ले जाए उसे अधर्म कहते हैं, और जो भगवान की प्रेम में सेवा की ओर ले जाते हैं उसे धर्म कहते हैं। काम या इच्छा ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुई, क्रोध भौहे यानी आईब्राउज के मध्य से, लोभ उनके होठों के मध्य से, और बोलने की शक्ति उनके मुख से, सागर उनकी जननेंद्रियां से, तथा नीच और अधम कार्य उनके गुदा या मल द्वार से, जो कि सभी पापों के स्रोत है। तो सब उत्पन्न हुए ब्रह्मा के शरीर या मन से। फिर ब्रह्मा के चार मुख से चार वेदों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सभी प्रकार के ज्ञान समाविष्ट है। ये चार है ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इनके बाद स्तोत्र स्तवन, जिनका उच्चारण पहले कभी नहीं किया गया था, पूजन की क्रियाएं, उच्चारण के विषय, और एक एक करके दिव्य कार्यों की भी स्थापना की गई। ब्रह्मा ने फिर सभी वेदों से आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत की कला और स्थापत्यम अर्थात आर्किटेक्चरल साइंस, ये सब वेद में से उत्पन्न किया। उनके सामने वाले मुख से आरंभ करते हुए वेद में शुद्ध ज्ञान है, और मनुष्य समाज के लिए जिस किसी भी ज्ञान की आवश्यकता है वो इसमें है। केवल इस लोक में नहीं, इस पृथ्वी लोक पर नहीं, परंतु अन्य और लोकों में भी। ये समझा गया है कि युद्ध की कला भी एक आवश्यक ज्ञान है सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, और उसी प्रकार संगीत की कला भी। ये सब ज्ञान के विभाग को कहते हैं उपपुराण, अर्थात वेद के सहयोग देने वाला ज्ञान। अंग्रेजी में जो कहेंगे तो इसे कहेंगे सप्लीमेंट्स ऑफ द वेदस। वेद का मुख्य विषय है आध्यात्मिक ज्ञान, परंतु मनुष्यों के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के सहयोग के लिए ये दूसरा ज्ञान उपपुराणों का वेद का आवश्यक भाग बन जाता है। और फिर कहा गया है इतिहास पुराणानि पंचमं वेदं ईश्वरं सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। इन उपपुराणों के बाद उन्होंने पंचम वेद को रचा, जिसे पुराण और इतिहास कहते हैं, और इनकी रचना उनके मुखों से हुई, क्योंकि वो सब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को देख सकते थे। इतिहास होते हैं कुछ विशेष देशों के या इस जगत के, परंतु पुराणों में सारे ब्रह्मांड का इतिहास मिलता है, और वो भी केवल एक कल्प का नहीं, कई कल्पों का। ब्रह्मा को उन सभी ऐतिहासिक सत्य का ज्ञान है, और इसी कारण ये सभी पुराण इतिहास है, कोई मानसिक कल्पना नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के द्वारा रचित ये वेद के भाग है, और इसे पंचम वेद कहते हैं। तो जो पुराण और इतिहास है वो पंचम वेद, वो पांचवा वेद है। जितने विभिन्न प्रकार के यज्ञ अग्नि से किए जाते हैं, जैसे षोडशी, उक्त, पुरीशी, अग्निष्टमा, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय और गोसवा, ये सब ब्रह्मा के पूर्वीय मुख से प्रकट हुए। फिर विद्या, दानम, तपह, सत्यम, धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम असृजत सहवृत्तिभिः, के विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पद माने गए हैं, और इसे सीखने के लिए चार आश्रमों की तथा चार वर्णों की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था भी ब्रह्मा के द्वारा रची गई थी। अर्थात विद्या को ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी, दान देने वाले गृहस्थ, तपस्या अपनाने वाले वानप्रस्थ,
और सत्य का प्रचार करने वाले सन्यासी, यही धर्म के चार पद है जिन्हें चार आश्रम कहते हैं। और फिर कर्तव्यों के अनुसार भी चार विभाजन है, और फिर कर्तव्यों के अनुसार भी विभाजन है। बुद्धिमान विभाजन को ब्राह्मण कहते हैं, राज्य संचालन के विभाग को क्षत्रिय कहते हैं, व्यापार और उपजाऊ विभाजन को वैश्य कहते हैं तथा मजदूर विभाजन को शूद्र कहते हैं। इन चार वर्ण और आश्रमों को नियोजित रूप से ब्रह्मा ने रचा था ताकि आत्म साक्षात्कार में वृद्धि हो सके। विद्यार्थी का जीवन, ब्रह्मचारी का जीवन उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करने के लिए है, पारिवारिक जीवन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, परंतु उसमें दान को मध्य रखते हुए करने का मार्गदर्शन है। और फिर पारिवारिक जीवन से छुटकारा प्राप्त करना तपस्या के लिए है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए है, और अंत में संन्यास जीवन परम सत्य के प्रचार के लिए है, आम जनता को प्रचार करने के लिए। जब एक समाज के ये सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग होता है। पशु वृत्तियों से मनुष्यों को शुद्ध बनाने के लिए ये वर्णाश्रम की शिक्षा है, और इनमें भी सबसे उत्तम दर्जे की शुद्धता स्वयं भगवान के ज्ञान से आती है, जो कि शुद्ध से भी विशुद्ध है। फिर ब्रह्मा के मुखों से प्रकट हुए न्यायपूर्वक तर्क का विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानूनी व्यवस्था, नीति सूत्र, भू भुवः और स्वः, ये सब ध्वनि ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई और प्रणव ओंकार ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुआ। इन सब की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कितना अद्भुत है कि अपने आप को मैंने सारे ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार से बिखारा है, फिर भी जनसंख्या इतनी कम है, इतने शक्तिशाली संत पुरुषों को उत्पन्न किया है, फिर भी आबादी बहुत ही कम है। इस दुर्भाग्य का विधि के लेख के सिवाय और कोई कारण हो नहीं सकता। जब इस विचार में वे डूबे हुए थे और अलौकिक शक्ति को निहार रहे थे और दो रूप उनके शरीर से प्रकट हुए, इन दोनों को अभी भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में जाना जाता है। ये दोनों शरीर ब्रह्मा के शरीर से ही निकले, एक के पास मूछें थी और दूसरे के छाती पर सूजे हुए दो स्तन। आज तक इनके प्राकट्य के स्रोत को कोई समझा ना सका, इसी कारण इसे ब्रह्मा का कायम कहते हैं, ब्रह्मा की ही काया, और ब्रह्मा के पुत्री या पुत्र होने का कोई संकेत भी नहीं है। ये दो नए भिन्न शरीर शारीरिक संबंध में जुड़ गए, उनमें से जो पुरुष का रूप था उसे मनु माना गया और उसका नाम था स्वयंभूव, और उस स्त्री का नाम था शतरूपा, जो कि ये महात्मा मनु की रानी थी। फिर इन दोनों ने शारीरिक संबंध से जनसंख्या बढ़ाई। मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा में 5 बच्चों को उत्पन्न किया, 2 पुत्र जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तनपाद, और 3 कन्याएं आकुटि, देवहूति और प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली सुपुत्री आकुटि को संत रुचि को दिया, अपनी दूसरी पुत्री देवहूति को कर्दम मुनि को दिया, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति को दक्ष को समर्पित किया, और इन्हीं से सारे विश्व भर आबादी भर गई। अब जैसे पहले समझाया गया था, ये प्राकृतिक जगत भगवान की अनेकों शक्तियों में से एक है, और 3 पुरुष अवतार या विष्णु स्वरूपों में से हमने अभी तक 2 विष्णुओं के विषय में चर्चा की, एक कारण जल में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले महाविष्णु जिसको कारणोदकसाई विष्णु कहते हैं, और दूसरा विष्णु विस्तार गर्भोदकसाई विष्णु जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड के गर्भोदक सागर पर निवास करते हैं, और उसी के कमल नाभि में से ये कमल का फूल उगता है जिस पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं और फिर सृष्टि की रचना करते हैं। अब तीसरा विष्णु विस्तार शिरोदकसाई विष्णु के नाम से विख्यात है, जो कि सात्विक गुण के अवतार है, भगवान के विराट रूप है,
और सभी प्राणियों के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो सब कुछ में प्रवेश करते हैं, एटम यानी परमाणु में भी। यही इस ब्रह्मांड के पालनहार है। इस ब्रह्मांड के उत्तरीय दिशा के ऊपर सत्यलोक से भी ऊपर उनका अपना लोक है, जिसे कहते हैं श्वेतद्वीप। वे अनंत शेष नाग की सैया पर शीर सागर में विश्राम करते हैं, दूध के सागर में। और इसी शिरोदकसाई विष्णु के माध्यम से अनेकों अवतारों का विस्तार होता है। हमें यह भी याद रखना है कि इस ब्रह्मांड के बाहरी इलाके में एक छिलका जैसा है, जैसे एक नारंगी के बाहरी विभाग में एक छिलका होता है, जैसे एक अंडे के बाहरी भाग में छिलका होता है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के बाहरी भाग में एक कवरिंग है, एक छिलका है, एक आवरण है। इस जगत को ब्रह्मांड कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आकार, इनका रूप एक अंडे की तरह है, ब्रह्मा अंडा। परंतु इस ब्रह्मांड का बाहरी छिलका एक मुर्गी के अंडे की तरह नहीं है। ब्रह्मांड का आवरण धातुओं से निर्मित है, पृथ्वी, जल, आग, हवा और खम। और ये एक एक आवरण पहले आवरण से 10 गुना अधिक मोटा है। सबसे पहला आवरण इस ब्रह्मांड में धरती का है, पृथ्वी का, पृथ्वी धातु का, और वो इस ब्रह्मांड से 10 गुना अधिक मोटा है। यदि ये ब्रह्मांड 4 बिलियन मील है आकार में, तो धरती का आवरण 40 बिलियन होगा। और फिर जल या पानी का आवरण धरती के आवरण से 10 गुना अधिक होगा। फिर आग का आवरण पानी के आवरण से 10 गुना अधिक रहेगा। तो यदि आप इस प्रकार से गिनते जाए तो इन धातुओं से आवृत यह ब्रह्मांड आवरण के मिलान में तो एक परमाणु या एटम की तरह होगा। और कितने ऐसे ब्रह्मांड है वो तो जानना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो इस एक ब्रह्मांड के आवरण का अनुमान लगा सके। अभी तक जो श्रोतागण इस सृष्टि के विवरण को सुनते आए हैं, उन्हें तो अनुमान हो चुका होगा कि वैदिक साहित्य में केवल सृष्टि यानी इस जगत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके विषय में जो विस्तार मिलता है वो विस्तार और आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने बड़े पैमाने पर यह विस्तार कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। मनुष्य की बुद्धि और उनकी सोच अत्यंत सीमित है और उनके अनुभव तो उनसे भी सीमित है। ऐसे सृष्टि के निर्माण का ज्ञान तो वही दे सकते हैं जो सृष्टि के समय पर उपस्थित थे और जिसे सृष्टि के समय की बात आज तक याद हो। और ऐसा व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता भगवान के सिवाय। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि भगवान श्री व्यास देव ने जो ये लिखा है वही इसका प्रमाण है कि वो स्वयं भगवान के अवतार है। इस जगत की रचना विस्तार पूर्वक किस प्रकार से हुई, ये हम सब मनुष्यों के समझ से बाहर की बात थी। परंतु भगवान ने अनन्य कृपा करके हमारी जानकारी के लिए, हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, जो हम कभी नहीं जान सकते थे वैसी जानकारी हमको दे रहे हैं। इसी कारण उनके प्रति हम जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। आज के इस विषय पर जो हमारे किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न हो या उनके पास कोई टिप्पणी हो तो हमारे पास वे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedvani@gmail.com। याद रहे वेदवानी vedvani@brisbane@gmail.com। आप सभी को हमारा साथ देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब आपकी सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन। उम्मीद है जी आपकी ये सुबह शानदार शुरुआत के साथ हो रही है और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। अगले कुछ टाइम तक यानी कि एक घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे जहां पर होगी भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की बड़ी खबरें, एंटरटेनमेंट गॉसिप, स्पोर्ट्स अपडेट, मौसम का हाल और आखिर में एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल मैसेज आपको जरूर सुनाया जाएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का ये सफर। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए कुछ हेडलाइंस जान लेते हैं। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में सर्द मौसम का असर जारी है, लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की गई है। वैश्विक बाजारों में आर्थिक गतिविधियों पर निवेशकों की नजर बनाई हुई है। वहीं पर खेल जगत में क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी चर्चाएं तेज होती नजर आ रही है। मनोरंजन की दुनिया की बात करें तो मनोरंजन की दुनिया में नए प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक टूर जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद इंडिया की कुछ न्यूज, उसके बाद जानेंगे ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें। आप सब जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं चौने का सफर। तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर नजर डालते हैं भारत के कुछ समाचारों में। तो दोस्तों, कई राज्यों में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट मोड किया हुआ है और डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर किसानों के लिए मॉनसून जो है वो राहत की खबरें सामने आ रही है। पर्यटन स्थलों पर जो मॉनसून है उसका आनंद लेने वालों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जानेंगे थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया की कुछ अपडेट्स। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें। दोस्तों, ब्रिस्बेन में ठंडी ठंडी हवा जो है उसमें मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हल्की सी धूप के साथ मौसम जो है और भी सुहावना नजर आ रहा है। और आज जो है ब्रिस्बेन में ठंडी ठंडी हवा चलने की, साथ ही थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं पर क्वींसलैंड की बात करें तो क्वींसलैंड में सड़क सुरक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय समुदाय के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी शुरू हो रही है। वहीं पर स्थानीय परिषदों की ओर से जो है पर्यावरण संरक्षण अभियान जारी हुआ है। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद दुनिया की कुछ अहम खबरों पर यानी कुछ हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आप सभी सुनकर आए हैं ये खूबसूरत सा गीत और आशा करती हूँ ये सफर आप सभी का बहुत ही सुहावना बन रहा होगा। तो आइए फिर इंटरनेशनल न्यूज की ओर जरा नजर डालते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कई देशों के बीच बैठक जो है वो जारी है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है वो बढ़ रहा है। नई तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया भर में निवेश जारी है। वहीं पर कई देशों में पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये सब जानी हमने बहुत सारी हेडलाइंस इंटरनेशनल नेशनल, और आशा करती हूँ ये हेडलाइंस जान के आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त जरूर हुई होगी। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो प्रेस वाणी में।

हां जी, तो कैसे हैं आप सभी? एंजॉय कर रहे हैं ट्रैक्स को? और आइए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट बज की। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट का इंतजार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है। साउथ इंडस्ट्री की आने वाली फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह जो है वो बना हुआ है। वहीं पर हॉलीवुड में नए म्यूजिक कॉन्सर्ट और फिल्म प्रोजेक्ट्स की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों में है। सोशल मीडिया पर कई स्टार्स के नए लुक और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो कि लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों की नजर आने वाली सीरीज पर है। फुटबॉल क्लब अपने नए सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। टेनिस खिलाड़ियों ने आगामी टूर्नामेंट के लिए अभ्यास तेज किया हुआ है। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चर्चा में है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। आशा करती हूँ इन ट्रैक्स को सुनकर आप सभी का मनोरंजन हो रहा होगा। और दोस्तों, मैंने आप सभी से कहा था कि लास्ट में मैं आप सभी से कुछ ना कुछ थॉट जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर रोज मेहनत की जाए ना तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो इन पूरा सबका अगर हम कंक्लूजन निकाला जाए तो वो है मेहनत। हमेशा इंसान को मेहनत करते रहनी चाहिए, तभी कामयाबी हासिल होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने हमारे साथ बिताया ये एक घंटा पसंद किया होगा। अगर आप किसी खास गाने की फरमाइश भी करना चाहते हैं या फिर अपना संदेश भेजना चाहते हैं तो हमें जरूर आप बता सकते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त चांदनी। आप सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमेशा गुनगुनाते भी रहिए। कल फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई सुबह और नई खबरों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्म स्थान में खुला पुलिस स्टेशन, ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाए। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबियत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के की तबियत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपिके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दांव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

दोस्तों, हम आ गए हैं, आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि बहुत कुछ होता है, नया नया चीज होने लगता है। मौसम में इतना ठंड होने के कारण हमारा बैटरी भी कपूट हो गया था और फोन डेड हो गया, सब कुछ, लेकिन अब ठीक होने लगा है। धूप खिली है और मैं जिंदा हूँ, टाइगर भी जिंदा है दोस्तों। और घर से भी मैसेज है कि क्या हुआ, पानसा नहीं कर रहे हैं, लोग डर गए हैं। नहीं, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। और चलो, मौसम में क्या है, ब्रिस्बेन मौसम के लिए कहा गया है कि आज जो मौसम है 25 डिग्रीज रहेगा, कम से कम 12, ये तो ब्रिस्बेन के लिए है। कल के लिए 10 एंड 23 रहेगा, फ्राइडे को 10 एंड 22 रहेगा, सैटरडे को 10 एंड 21 रहेगा, संडे को 11 एंड 20 रहेगा दोस्तों, और मंडे को 11 एंड 20 रहेगा, अगले ट्यूसडे को 11 एंड 23 रहेगा। तो चलो, इतना बहुत है, यानी कि मौसम बहुत खास बदलाव नहीं है, इसी तरह से चलता रहेगा दोस्तों एक दो हफ्ता, क्या चलो। और ठंड का बात मत करो भाई, यहाँ बहुत ठंड है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए, और रोड में आया है सेंट गेट रोड, नंदा सिग्नल फोल्ट है यहाँ पर, बस एक ही आया है और वैसे कुछ और नहीं है दोस्तों। शायद मेरी आवाज़ में भी कुछ फर्क होगा ठंड के कारण। और देखिए, फ्रेश फिजी न्यूज़ में कहा गया है कि फिजी लॉन्चेस द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाइमेट इंश्योरेंस स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। द न्यू पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रैपिड पेआउट्स आफ्टर सीवियर वेदर इवेंट्स, हेल्पिंग बिजनेसेस रिकवर फास्टर आफ्टर साइक्लोन एंड फ्लड्स। Authorities are reviewing ship hygiene and safety rules. Fiji Health Ministry is seeking stronger powers to inspect vessels, test onboard water, and act against ships that fail hygiene standard. Fire investigation in Bar. The National Fire Authority is investigating a fire that destroyed a vacant farmhouse at Bilolo in Bar. No injuries have been reported. Tourism continues to grow strongly. Fiji has recorded its highest ever June visitor arrivals, helped by new resorts, visitor experiences, and expanded flight routine. ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूज टू परफॉर्म स्ट्रांगली इन ग्लासगो विद मोर स्विमिंग एंड एथलेटिक मेडल्स एक्सपेक्टेड टू कॉम्पिटिशन एज कॉम्पिटिशन कंटिन्यू। Origin Energy Cyber Accident. Origin says the personal data of around 900,000 customers may have been accessed in a cyber breach. The company is contacting affected customers while investigators continue. Victorian Police, Jacinta Allen, has resigned as Premier of Victoria, making a significant political change in the state. Our Qantas milestone, Qantas has completed a record-setting ultra-long haul flight from Melbourne to Toulouse. Ye kahan hai bhai? Highlighting to progress towards future long-distance services. To ye raha kuch news, aur karyakram mein aage badhte hain dosto, aap sun rahe hain Radio Brisbane, aapki apni pehchan.

जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ ही देर में एक शोक सूचना है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकर आएंगे। और इन द मीन टाइम चलो अगला गीत सुनते हैं। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान, तो लीजिए सुनिए इस गीत को।

0: जी हाँ दोस्तों, चले अब जो शोक सूचना है सुन लेते हैं। और आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर हूँ, शायद इसीलिए हमारा कुछ कनेक्शन में भी प्रॉब्लम था। लेकिन लीजिए सुनिए। ओ माफ करना।
1: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व नेंडी संगम कॉलेज फिजी के वाइस प्रिंसिपल और इंडियन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के प्रधान तथा ब्रिस्बेन के संजय सुमेर और रजनी सुमेर के पिता तथा चंद्रा सुमेर के पति ब्रिस्बेन के मास्टर राम सुमेर के निधन शुक्रवार 24 जुलाई रात 11:35 पर पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 1 अगस्त सुबह 9:30 से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन एंड क्रेमेटोरियम 329 होलैंड पार्क ब्रिस्बेन में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप रजनी सुमेर जी को 0411-027-801 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
0: तो हाँ दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, परमा भाई भी फ़ोन में थे माफ़ करना। और चलो ये हो गया है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे दोस्तों, और हमेशा हम लंच वंच करते थे साथ में। खैर यही है ज़िंदगी दोस्तों, यही है ज़िंदगी। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

और देखिए दोस्तों, कहा गया है कि अगर आप 70 हैं और आप आपकी ज़िंदगी लंबी है, आप चाहते हैं, तो कुछ ऐसे काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? रोज़ थोड़ा वॉक करो आप, और एक्टिव रहो। बॉडी जितनी मूव करेंगे आप, उतनी स्ट्रांग और फिट रहेंगे। यानी कि हो सके अगर आप 8 to 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं। मैं तो चलता हूँ अबाउट 6-7, 6 तक करता हूँ एवरेज। लगता है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और आपका जो जीन्स भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है दोस्तों, तो ये सब याद रखें। और हेल्थी खाना खाओ, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, प्रोटीन, और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादा पानी, या ये आपके बेस्ट फ्रेंड है पानी। नफरत है पानी से, मालूम नहीं क्यों, लेकिन पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल्स खाना, प्रोटीन खाना, एक दो अंडा खा लिया करे दोस्तों, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपने दिमाग को बिजी रखो। जी हाँ, अगर दिमाग को बिजी नहीं रखेंगे तो आप काम बिगड़ सकता है दोस्तों। किताबें पढ़ो या कुछ नया सीखो, पजल्स करो या कोई हॉबी एंजॉय करो, और लोगों से कनेक्टेड रहो, जो मेरा थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना और दिल और दिमाग दोनों को दोनों के लिए अच्छा होता है। और इसमें आपको ऐसा फ्रेंड को चुनना पड़ेगा जो थोड़ा सेम फ्रिक्वेंसी में हो। कोई ऐसा नहीं जो हमेशा कंप्लेन कर रहा हो, किसी की बुराई कर रहा हो। इन सब लोगों से आप बच कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हंसते हैं, गाते हैं, खेलते रहते हैं और किसी को निंदा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा रहो। और अगर आपकी आदत है दोस्तों किसी की बुराई करना, हमेशा नेगेटिव देखना, तो अपने आप को आप बदलो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी छोटी होगी। अच्छी नींद लो। जी हाँ, 7 से 8 घंटा, ये तो मुश्किल है भाई। क्वालिटी स्लीप बॉडी के रिपेयर करती है। और हाँ, रात रात बैठकर क्या बोलते हैं, ये कावा नहीं पीना चाहिए। बहुत मैं जानता हूँ आप गुस्सा जाओगे मेरे बात सुनकर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अच्छाई के लिए कह रहा हूँ कि रात भर आप बहुत जागो मत। उसी समय है जबकि आपका जो बॉडी का जो रिपेयर होता है उसी समय। और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ। छोटी प्रॉब्लम को कभी इग्नोर मत करो। टाइम पर चेकअप से और अपना ब्लड चेक हमेशा करते रहो दोस्तों। बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है जब आप जब वो छोटा हो उसको आप पहले वो कर ले। और लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर्स रखो और पॉजिटिव सोचो हर दिन। किसी ना किसी बात का एक्साइटमेंट रखो और स्माइल करो, दूसरों की मदद करो, और हर दिन के लिए थैंकफुल रहो। सुबह उठते हैं बोलो थैंक यू भगवान, बड़ा दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर योर पेन। ठीक है, एक दिन दिया मुझे आपने तो। जी हाँ दोस्तों, आगे सिर्फ एक नंबर है। दिल यंग रखो, बॉडी एक्टिव रखो और सोच पॉजिटिव रखो। ज़िंदगी सिर्फ लंबी नहीं, खूबसूरत भी बन जाएगी। बात मानिए। और यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। जैसे कि अच्छा, आप कुछ पेड़ पौधे लाए, आप बोना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठकर आपको इतना चाहत होना चाहिए कि चलो मैं ये कर लूँ। या जैसे भी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं अकेला निकलूँ, थोड़ा अपना वैन को कन्वर्ट करूँ और जाकर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया देखूँ। देखो इसमें मुझसे 1 साल से ऊपर चला गया ये सब करते। आई वॉज एक्साइटेड। एवरी मॉर्निंग उठता था तो मैं कहता था चलो मुझे आज ये करना है यार। आई कुड सी दी एंड पिक्चर, जो भी मैं जी रहा हूँ, जो मैं आई एम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे जो बातें हैं दोस्तों, माइंड को एक्टिव रखो। ये नहीं सुबह उठ गया, रोटी टी खा लिया, बस थोड़ा घूम घाट कर सोफा में बैठ गया, मूवी वॉश मूवी देखने लगे हैं, बस इसी तरह से टाइम बीत जाता है। नहीं, यू मस्ट हैव अ चैलेंज लाइफ में। कुछ कुछ होने की ज़रूरत है आपके लाइफ में, राइट? देयर मस्ट बी अ पर्पस इन योर लाइफ। एवरी डे शुड कम विद अ पर्पस कि आज हम क्या करेंगे और आज मुझे ये करना है, वो करना है, एंड समथिंग जो आप एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि अच्छा चलो काम है करना पड़ेगा। पर्पस ये होना चाहिए जिसमें से आपको कुछ एंजॉयमेंट मिल रहा हो। यू मस्ट लाइक दैट थिंग टू डू दैट थिंग। यू मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, और अपना जो प्रेशर अच्छा चेक करते रहे, आपका जो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि प्रोटीन भी ऊपर रखो कि अपने मसल्स के लिए, क्योंकि एज में मसल्स गिरने लगता है दोस्तों। और अपना शुगर लेवल सब चेक करो और प्रेशर चेक करो, ये सब
कीप एन आई ऑन एवरीथिंग. कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दवा नहीं पीते हैं. जी हाँ दोस्तों, मैं कोई किसी तरह का दवा नहीं पीता हूँ, और ऐसे आप भी होंगे क्योंकि मे बी यू हैव लिव्ड राइट. और शराब वगैरह बहुत कम खाने के साथ, अगर एक वाइन पी लिया, आई हैव अ वाइन विद माई फूड एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दैट, बिकॉज हार्ट एंड एवरीथिंग इज क्वाइट गुड. ये नहीं कि पी कर अपने दिमाग को ऐसा कर ले कि आप एक जोक बन जाए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और एक बहुत प्यारा गाना है, और विशाल शेखर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना है दोस्तों.

और दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। चलो कुछ और भी फैक्ट आपको बताता चलूं दोस्तों। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है दोस्तों। क्या आप जानते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी आपके जो मूड को इम्प्रूव कर सकती है। और अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग भी ज़्यादा एक्टिव रहता है और आप खुश रहेंगे दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग बात है, लाफिंग इज एक्चुअली गुड मेडिसिन। जब हम दिल से हंसते हैं ना, वैसे नहीं, जब दिल से हंसते हैं हमारा बॉडी फील गुड केमिकल जो होते हैं ना उसे रिलीज करता है, जो स्ट्रेस को कम करना करने में मदद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इन बातों को याद रखें आप। तो चलिए, आज का जो चैलेंज है यही है, थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए और किसी एक इंसान को हंसाइए। हो सकता है आपके जो आपकी स्माइल किसी का पूरा दिन बना दे। मेरा स्माइल तो आप देख नहीं सकते हो दोस्तों। एनीवे, लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं, सेहत, सुकून और अपनों के साथ हंसी और दो पल जो है उन्हीं की कदर कीजिए दोस्तों। यही है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और मुझे मालूम नहीं ये गाना मैंने बजाया या नहीं बजाया, मैं नहीं सोचता हूँ। चलो सुनते हैं।

आज क्या है, बुधवार ना, मुझे लग रहा है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब क्या है? जी हाँ, रिटायरमेंट का मतलब है अब मंडे और फ्राइडे में सिर्फ नाम का फर्क रह गया है। ओके।

जी हाँ दोस्तों, परदेसी खेल अभी आपने सुना और इसी के साथ साथ 8:12 हो गए हैं और थोड़ा स्लिक हो गया हूँ दोस्तों। आपका अगर जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा, और अगर आपका किसी तरह का एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, डिवोर्स एनिवर्सरी हो, जो कुछ भी हो, चलो आपको याद दिला दिया बस। और नजी रोड नंदा मल्टी व्हीकल क्रैश लेन और लेन्स रिड्यूस्ड, ये कोई 4 मिनट पहले आया था दोस्तों। अगर कोई ऑल्टरनेट रूट अगर आप अपना सके तो आप अपना लें दोस्तों, ठीक है। और माउंटकोटन रोड शेल्डन में वहाँ पर रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ है, इससे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, लेकिन अब सभी डायरेक्शन ठीक जा रहा है। क्या चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने कहा, आप जानते हैं ये 9 बजे तक ये प्रोग्राम है, फिर उसके बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ कार्यक्रम सुनना, और 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ, तो जरूर कार्यक्रम।

जी हाँ, शीला की जवानी। दोस्तों आज वेंसडे है तो कुछ ऐसा ही गीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। शायद मैंने आपसे कहा नहीं, अमिता आज नहीं है, अमिता मंडे को आएगी दोस्तों। और जी हाँ, तो चलो आज मैं हूँ। और विनी, थैंक यू वेरी मच, आपने कुछ भेजा बहुत हिलेरियस। खैर चलो, मैं रेडियो पे नहीं कहूंगा लेकिन बहुत अच्छा भेजा आपने, थैंक यू सो मच। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान। और 8:18 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी।

और 26 मिनट हो गए हैं दोस्तों, 8 बजकर आप सुन रहे हैं रेडियो मिज़बानी, आपकी अपनी पहचान। और आप जानते हैं अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। इसमें क्या है कि कांग्रेस और ये सब फिर से इलेक्शन होता है, आई थिंक एवरी 2 ईयर्स ऐसे कुछ है दोस्तों, और ये होने को है अबाउट 80 डेज में। तो अभी माइक जॉनसन क्या कह रहा है, माइक जॉनसन इज द स्पीकर और ये रिपब्लिकन पार्टी का है जो ट्रम्प का है, और ऐसे कहा गया है कि डेमोक्रेटिक माइट विन विद द लैंडस्लाइड, तो इनका पावर कम होने लगेगा। लेकिन माइक जॉनसन ने कहा है, he said he is very confident about republic chances in the midterm election because he's formed a prayer group for it and is certain that god wants them to win. Are dada kya baat hai, chalo dekhte hain ki bhagwan kya karte hain, theek hai। खैर चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला जो गीत है प्रीतम मिक्का सिंह और शिफाली, ये सब है देसी बॉयज में, आपको पता चल गया होगा कौन सा गीत। सुबह होने ना दे, लेकिन सुबह तो हो गया है।

अरे दोस्तों, क्या आपको याद है ट्रम्प ने ऑस्ट्रेलिया पर फिर से ठोक दिया टेरिफ? जी हाँ, और कह रहे हैं कि वी आर रेकिंग टन्स ऑफ मनी, लेकिन वहां के जो लोग हैं बहुत सफा कर रहे हैं, क्योंकि टेरिफ कौन भरता है? जो खरीदता है वो भरता है दोस्तों, तो ये पैसा अपना तो काफी बना लिया है। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि देर आर रिपोर्ट्स दैट नेथन्याहू विल ब्रीफ यू ऑन इरेनियन एक्टिविटी एट पिक एक्स माउंटेन। तो ये क्या ये कह रहा है कि आई डोंट नीड बीबी टू टेल मी दैट। आप जानते हैं ना, नेथन्याहू का बीबी बोलते हैं, उनका निकनेम है। बीबी इज टेलिंग मी दैट बिकॉज ही वांट्स मी टू स्टे इन्वॉल्व। आई हैड बीबी अनाउंस दैट, आई सेड व्हाई डोंट यू जस्ट टेल इट टू मी, व्हाई डू यू हैव टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। आई स्टॉप्ड 8 वॉर्स, आई वुड से 5 ऑफ देम बिकॉज ऑफ टेरिफ। The threat of tariff stopped India and Pakistan from going into a nuclear war. Yes, the first nuclear war in history between the two countries with nukes would have already happened if it wasn't for Trump threatening tariffs on Truth Social, and 1 billion people would be dead, right? You are such a comedian. I hope you are always around, Mr. Trump. लेकिन क्या करूं, आपका जो कैरेक्टर पर अगर हम ध्यान दें तो फिर क्या बताएं हम आपको।

और दोस्तों, कैरेक्टर ढीला है, कैरेक्टर को बहुत बचा कर रखिए, नहीं तो फिर अगर आप कैरेक्टर को नहीं बचा कर रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और मुझे बताया गया था कि आज थोड़ा वेंसडे वाला मूड रखना, कैरेक्टर नहीं तो बदनाम हो गया।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं और मैं हूँ जतीश पूरन आपका साथ दे रहा हूँ। शायद अभी आपने रेडियो ऑन किया कभी पहली बार और आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये तो क्या बताऊँ मैं। और यू नो यू आर गेटिंग ओल्डर व्हेन योर बैक गोज आउट मोर ऑफन देन यू डू। और कहते हैं कि माई मेमोरी इज फैंटेस्टिक। जी हाँ, माई मेमोरी इज फैंटेस्टिक, आई जस्ट कैन रिमेम्बर वे आई पुट इट। चलिए जी हाँ, चिकनी चमेली।

व्यक्ति ने भी पौवा चढ़ाया है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि स्ट्रीट्स लॉक डाउन आफ्टर मैन क्लाइम्स क्रेन ऑन गोल्ड कोस्ट. मल्टीपल स्ट्रीट हैव बीन शट डाउन ऑन द गोल्ड कोस्ट एज पुलिस ट्राई टू निगोशिएट विद अ मैन हु हैज क्लाइम्ड पार्ट वे अप अ मैसिव कंस्ट्रक्शन क्रेन. The man came to police attention when he scaled the machine in Miami just after 6 a.m. Police say a small section of the esplanade has been closed off and motorists are advised to avoid the area. Traffic is being redirected. It is not yet known why the man, who appears to be clad in his underwear and carrying a bedsheet, chose to climb the crane. ऑफिसर्स शायद सोच रहे कि ऊपर गर्मी होगा, आई डोंट नो. ऑफिसर्स अगर उसका दिमाग ऐसा है इसीलिए तो ऐसा किया है ना. ऑफिसर्स ऑन द सीन आर ट्राइंग टू निगोशिएट विद हिम टू कम डाउन बट नाइन न्यूज अंडरस्टैंड्स द मैन हैज नॉट बीन कम्युनिकेटिव. होगा शायद बेचारा कुछ दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकता है. अ हैवी इमरजेंसी सर्विस प्रेजेंस इज ऑन द सीन इंक्लूडिंग फायर फाइटर्स एंड पैरामेडिक्स. The crane is part of a construction site, but all work there has been halted as this incident unfolds. तो अगर आपके पास कुछ लेटेस्ट न्यूज है इसके साथ क्या हुआ है दोस्तों, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं. शायद जैसे मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम ही होगा इनके साथ. जी हाँ.

और ना ना ना ना मुझसे मत पूछना दोस्तों कि जो अगला गीत मैं बजाने जा रहा हूं मुझे क्यों इतना पसंद है। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है मैं खुद ही नहीं जानता हूं दोस्तों।

और दोस्तों इसी गीत के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप सभी ने मुझे साथ दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड, बताइए हमारे रेडियो के बारे में, आप अपने यार दोस्त को बताते रहिए। दोस्तों चलिए कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और जो एक शोक सूचना है दोस्तों उसे फिर से हम प्रसारित करेंगे और फिर इसके बाद आप चले जाएंगे हमारे स्टूडियो। जैसे आप जानते हैं आज मैं अभी भी आउट हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मंडे से आई विल बी बैक इन द स्टूडियो। तो चले शोक सूचना और फिर बाद में बाकी कार्यक्रम आप सुनते रहेंगे सताशी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार और यहाँ कुछ ऐसा है।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले कि आपके साथ आज की बातें करूं, सबसे पहले उन्हें विश कर दूं जिनका आज बर्थडे है। सो बर्थडे बेबीज, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और बस दुआ इतनी है कि यार जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कदम से कदम मिलाते रहिए और चलते रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी जीतना है, हासिल करना है। जिनके लिए आज दिन इसलिए खास है क्योंकि आज वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी। सो यार एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहिए। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपके रिश्ते को डिसबैलेंस करेंगे और आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के साथ अगर विश्वास का रिश्ता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। और जिनके लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। ये प्लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस सुन रहे आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। और इस बार इट हैपेंस का साथ जो इस वक्त आपके साथ है बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये सुबह आपके लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा चलिए बात करते हैं अपने गोल्स की। यू नो हम सबके पास ना एक विश लिस्ट होती है और एक होता है गोल, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये पाना है, ये होती है आपकी विश लिस्ट। लेकिन पता आपको विश लिस्ट और गोल में फर्क क्या होता है? देखिए विश लिस्ट सिर्फ आपके दिमाग में होती है, आप उसे कभी भी ना एक पॉसिबल वे के जरिए आप उसे अपनी ड्रीम से सच्चाई नहीं बना पाते। और गोल जो है वो कैलेंडर में होता है। सो अगर आप अपने सपने के आगे कोई डेट नहीं लिखते हैं ना, तो वो सपना सपना ही रह जाता है, आपकी विश लिस्ट ही रह जाता है। तो इसलिए अपने सपने को अगर आप सच्चाई में सामने लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप लीजिए, चाहे सबसे छोटा ही क्यों ना हो वो स्टेप, बट उठाइए जरूर ताकि आप अपने गोल की ओर बढ़ सकें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेन पर।

लोग क्या कहेंगे, आय हाय, बड़ा ही फेमस डायलॉग है। अगर फेल हो गए तो हमारा दिमाग हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन आज सताक्षी आपसे एक सवाल पूछती है, अगर आप कामयाब हो गए तो। इस अगर को कभी दूसरे एंगल से देखा है आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी आदत है ना नेगेटिव साइड को ही देखने की। लोग हमेशा आपके रिजल्ट पर ताली बजाते हैं, आपकी मेहनत पर नहीं। तो लोगों की बातें सुनना बंद करिए और अपने काम की आवाज को थोड़ा और तेज करिए। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: पिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस. अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में. जी हाँ, चलिए मिलकर लगाते हैं गानों की हैट्रिक. 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए सताक्षी लेकर आई है, और आज का ये पहला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए.

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर 88.7। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक। एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो गानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए। और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

रेडियो प्रस्वानी पर सदाक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। भाई रेंटल बॉयफ्रेंड, इस टर्म को सुना है आपने? हाँ, देखिए ये टर्म जो है इसकी शुरुआत हुई थी जापान से और अब ये इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। रेंटल बॉयफ्रेंड क्या मतलब है इसका? भाई जैसा कि वर्ड बता रहा है, रेंटल बॉयफ्रेंड मतलब किराए पर बॉयफ्रेंड का मिलना। अच्छा, ऐसा होता था ना कि पूरे ग्रुप में सबके पास अपने बॉयफ्रेंड्स हैं लेकिन एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है और वो डायलॉग मारता था ना कि बॉयफ्रेंड क्या किराए पे मिलता है जो उठा लूं। तो हाँ भाई, अब बॉयफ्रेंड किराए पे मिलता है और सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये रेंटल बॉयफ्रेंड आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत जल्दी ट्रेंड चल पड़ा है और इस ट्रेंड के चलते लोग मूवीज जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, रेंटल बॉयफ्रेंड हायर कर सकते हैं और स्टेटस सिंबल की तरह है ये। लेकिन ये ट्रेंड जब मैं पढ़ रही थी, जापान तो एक खैर अदर लेवल कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि यार कहाँ आ गया है सब, किस ओर आज का यूथ जा रहा है, लोग जा रहे हैं। मतलब हम बेसिकली देखा जाए तो ये स्टेटस सिंबल है ना कि भाई सबके पास है, हमारे पास नहीं है तो हमें भी दिखाना है कि हमारे पास तो है, बट क्या ही यूज है इसका? सोचने वाली बात है ना दोस्तों। आई डोंट नो कि क्यों ये स्टेटस सिंबल इतना हाई होता जा रहा है हमारा कि हमें रेंटल बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। आपका इस बारे में क्या थॉट है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ हैं आप।

यार, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में भी देखा, और अब हम देख रहे हैं भारत में। हजारों बच्चे सड़कों पर हैं और किस तरह से उन्हें सप्रेस किया जा रहा है, इस मोमेंट को, प्रोटेस्ट मोमेंट को दबाया जा रहा है, वो देखा जाए तो दोनों साइड मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना साइड भी है क्योंकि इसके पहले भी पेपर्स लीक होते रहे, लेकिन बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन मैनेजमेंट में सुधार भी हुआ है इस दौरान, भारत की बात करूं तो। उसके बाद एकदम से इस तरह का आंदोलन आना, डेफिनेटली स्टूडेंट्स की आड़ में बाकी की पार्टीज अपना मुनाफा तो कमा रही हैं, नो डाउट। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमेशा जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जनता का सेवक हूं। तो जनता का सेवक होने का मतलब ये था इस वक्त, इस इतना आंदोलन बढ़ता ही नहीं आई गैस, अगर नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट्स के बीच पहुंच जाते। इस मोमेंट में कई नेता शामिल हो चुके हैं, कई अभिनेता अभिनेत्रियां शामिल हो चुके हैं, मतलब बॉलीवुड भी इस मोमेंट में खड़ा है, कई बड़े लोग शामिल हो चुके हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, ये लोग अगर इस मोमेंट का हिस्सा ना बनते जाकर बात करते स्टूडेंट्स से, तो पार्टीज को, जो अदर पार्टीज हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता और शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा काम किया है, उन्होंने बच्चों को पर डंडे चलवाए, उन्होंने बच्चों को मरवाया और उन्हें सप्रेस करने की, उन्हें दबाने की कोशिश की, जो आई थिंक, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आई गेस ये गलत है। आपकी राय क्या है हमारे साथ बांटिएगा। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660